अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 24वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 14 जून 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा इस मंगल ध्वनि के साथ ही आरंभ होती है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है।

0: ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं देशगान।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में प्रस्तुत है तृप्ति साक्या के स्वर में ये राम भक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे हरी हरन के स्वर में भक्ति रचना। कार्यक्रम आराधना की अंतिम प्रस्तुति में हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह के स्वर में ये भक्ति गीत।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही आज की आराधना यहीं संपन्न होती है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में कार्यक्रम प्रकाश किरण का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे।
1: श्रेष्ठ धन क्या है? दूसरा प्रश्न यह था, किसके अभ्यास से सुख मिलता है? तीसरा प्रश्न था, सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? और चौथा प्रश्न था, किस प्रकार का जीवन श्रेष्ठ कहा जाता है? इसके उत्तर में भगवान बुद्ध ने इस प्रकार वर्णन किया है, सद्दीधवित्तम पुरुषस्य सेठम धम्मो सुचिन्नो सुखमावहाति सच्चम हवे साधुतरम रसानम पैया जीविम जीवित माहुसेठम। इस संसार में मनुष्य का श्रेष्ठ धन है उसकी श्रद्धा। धर्म के अभ्यास से सुख की प्राप्ति होती है। सब रसों में उत्तम रस है सत्य, और जो जीवन प्रज्ञामय है वही जीवन श्रेष्ठतम है। भगवान बुद्ध से एक बार 4 प्रश्न और पूछे गए। पहला प्रश्न था, मनुष्य पुनर्जन्म रूपी बाढ़ को किस प्रकार पार करता है? दूसरा प्रश्न था, संसार रूपी सागर को किस प्रकार तैर कर पार किया जा सकता है? तीसरा प्रश्न था, किस प्रकार दुख का अंत हो सकता है? और चौथा प्रश्न था, किस प्रकार मनुष्य शुद्ध होता है? उसके उत्तर में भगवान बुद्ध ने इस प्रकार कहा, सद्धाय तरति ओघम अपमादेन अन्नवम विरियेन दुःखम अच्येति पञ्याय परिशुज्यति। मनुष्य श्रद्धा के बल से पुनर्जन्म रूपी बाढ़ को पार कर जाता है, अप्रमाद से संसार सागर को पार कर लेता है, और वह पराक्रम से दुख का अंत कर लेता है, और प्रज्ञा के बल से, विज्ञान के बल से वह परिशुद्ध होता है। भगवान बुद्ध से किसी ने प्रश्न पूछा।

0: कि मनुष्य किस प्रकार प्रज्ञा प्राप्त करता है। दूसरा प्रश्न पूछा किस प्रकार धन प्राप्त करता है। और तीसरा प्रश्न था किस प्रकार मित्रों को प्राप्त करता है, किस प्रकार मित्रों की वृद्धि कर सकता है। चौथा प्रश्न था ऐसा क्या कार्य है जिसके करने से परलोक में जाकर पछताना नहीं होता। भगवान बुद्ध ने इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया, सद्दहानो अरहतम धम्मम निब्बान पत्तिया सुसुसा लभते पय्यम अपमत्तो बिचक्खणो। निर्वाण की ओर ले जाने वाले अरहतों के धर्म में जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, विनय युक्त होता है, प्रमाद नहीं करता, ऐसा बुद्धिमान पुरुष प्रज्ञा को प्राप्त करता है। पतिरूपकारी धुरवा उठाता विन्दते धनम सच्चेन कित्तिम पप्पोति ददम मित्ता निगंधति। उचित काम को करने वाला दृढ़ और प्रयत्नशील पुरुष धन को प्राप्त कर सकता है। वह कीर्ति सत्य के बल से प्राप्त करता है और दान देकर मित्रों की वृद्धि कर सकता है। सच्चम धम्मो धिति चागो सवे पेचन सोचति अस्मालोका परम लोकम सवे पेचन सोचति। जिस श्रद्धालु गृहस्थ में सत्य की, धर्म की, धृति की और त्याग की वृत्ति होती है, ये चार धर्म जिस व्यक्ति में होते हैं, वह परलोक में जाकर कभी नहीं पछताता। इसलिए सत्य का, धर्म का, धृति का और त्याग का मनुष्य को अभ्यास करना चाहिए।
1: धर्म ग्रंथों से पाठ में बौद्ध ग्रंथ धम्मपद से पाठ अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।
2: कार्यक्रम प्रकाश किरण का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस का गायन भाग 94। मुख्य गायन स्वर हैं अनुराधा पौडवाल के और संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

किसान भाई, सोयाबीन की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें JS 95-60, JS 93-5, JS 71-5, JS 335, NRC 12, NRC 37 या अहिल्या 4, भूसा 16 आदि बहुत सारी किस्में हैं। किसान भाई, विभिन्न जातियों के बीज के आकार के अनुसार सामान्य अंकुरण क्षमता वाले बीज की दर किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि छोटे दाने वाली किस्म 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मध्यम दाने वाली किस्म में 75 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और बड़े दाने वाली किस्मों में

0: स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं सप्त क्रीडक पुरस्सरं पराजितम् इति वार्ताः।
1: संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए जोहन लकड़ा और साथी के स्वर में ये सरगुजिहा भजन गीत।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जंगी लकड़ा और साथी के स्वर में ये सादरी सूगा गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में भारतीय प्रसारण की

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी की असली खूबसूरती केवल अपने लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के काम आने में है। जब किसी की मदद से चेहरे पर मुस्कान आती है तो उसका सुकून अलग ही रहता है। इसी बात को मशहूर समाजसेवी बाबा आमटे यानी मुरलीधर देवीदास आमटे जी ने बेहद खूबसूरती से कहा था। जो व्यक्ति दू

मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:14 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंकज उदास की आवाज़।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में पेश है तलत अजीज की आवाज में ये नगमा।

0: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त सूचना और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: सुप्रभात। कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा के आज के अंक में मैं हूं प्रियंका। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर रायपुर बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुँच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। समाचार MCB से। रक्तदान को महादान कहा जाता है और यह केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन लाखों स्वैच्छिक रक्तदाताओं के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है, जो निस्वार्थ भाव से रक्तदान कर जरूरतमंद लोगों को नया जीवन प्रदान करते हैं। साथ ही यह दिवस सुरक्षित, पर्याप्त और नियमित रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी संदेश देता है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म कश्मीर की कली से। संगीत निर्देशन है OP नैयर का, गीतकार है SH बिहारी और गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। समाचार अंबिकापुर से। केंद्रीय जेल अंबिकापुर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा जेल परिसर में प्रतिबंधित सामग्री की संभावित आपूर्ति को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जेल अधीक्षक केंद्रीय जेल अंबिकापुर तथा मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं रायपुर से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में यह आदेश जारी किया गया है। केंद्रीय जेल अंबिकापुर चारों ओर से आवासीय बस्तियों से घिरा हुआ है, जिसे असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन अथवा अन्य हवाई माध्यमों से जेल परिसर में प्रतिबंधित सामग्री पहुँचाए जाने की आशंका बनी रहती है। जारी आदेश के अनुसार केंद्रीय जेल अंबिकापुर की मुख्य दीवार के बाहर 100 मीटर की परिधि को रेड जोन एवं नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में ड्रोन, गुब्बारे तथा किसी भी प्रकार के विमानन उपकरणों के उड़ान संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नया दौर से। गायक कलाकार हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी, गीतकार हैं साहिर और संगीत निर्देशन है ओपी नैयर का।

समाचार अंबिकापुर से। जिला कलेक्टर के निर्देशन तथा उप संचालक कृषि के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा जिले में खाद एवं उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने तथा वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगातार औचक निरीक्षण एवं जांच की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 11 जून 2026 को विकास खंड अंबिकापुर अंतर्गत आरपीए कृषि फॉर्म करजी में ब्लॉक स्तरीय जांच दल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। जिले में संभावित मानव तस्करी के संबंध में 11 जून 2026 को रात्रि में प्राप्त गोपनीय सूचना पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में विभागीय अमला, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। प्राप्त जानकारी के आधार पर रामानुजगंज बलरामपुर से अंबिकापुर की ओर आ रही रॉयल बस को प्रतापपुर नाका के पास त्वरित रूप से चिन्हित किया गया एवं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विभागीय स्टाफ को तत्काल

रॉयल बस के भीतर तैनात किया गया। रॉयल बस के अंबिकापुर बस स्टैंड पहुंचते ही सघन जांच एवं भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की गई। बस में कुल 19 व्यक्ति जिसमें 16 बालिकाएं एवं 3 बालक पाए गए। बालक बालिकाओं से पूछताछ करने पर यह पाया गया कि ये सभी अंबिकापुर के रास्ते कर्नाटक राज्य जाने वाले थे। रात्रि का समय होने के कारण 16 बालिकाओं को MSSVP बाल गृह बालिका एवं 3 बालकों को वसुंधरा खुला आश्रय गृह

कर्नाटक राज्य जाने वाली थी। रात्रि का समय होने के कारण 16 बालिकाओं को MSSVP बाल गृह बालिका एवं 3 बालकों को वसुंधरा खुला आश्रय गृह बालक में संरक्षित कराया गया। प्रकरण में त्वरित विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए 12 जून 2026 को सभी बालक बालिकाओं को चाइल्ड हेल्पलाइन एवं संस्था के कर्मचारियों द्वारा बाल कल्याण समिति सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में मजरूह का लिखा ये गीत। फिल्म है ज्वेल थीफ, संगीतकार है SD बर्मन।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। समाचार अंबिकापुर से। जिला कलेक्टर के निर्देशन तथा उपसंचालक कृषि के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा जिले में खाद एवं उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने तथा वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगातार औचक निरीक्षण एवं जांच की कार्यवाही की जा रही है। जिले में बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जनपद पंचायत बलरामपुर के सभा कक्ष में 15 जून 2026 को प्रातः 11 बजे से रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी दी है कि निजी क्षेत्र की 6 कंपनियों से कुल 1048 रिक्त पदों की मांग पूर्ति एवं रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्वतंत्र माइक्रो फिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फील्ड ऑफिसर के 20 पद, सेफ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सर्विस कंपनी से सिक्योरिटी गार्ड के 50, सुरक्षा गार्ड के 200, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 50, फील्ड ऑफिसर के 6, मार्केटिंग मैनेजर के 2, टीआरजी ऑफिसर के 2, लेबर 100, परिश्रम ह्यूमन रिसोर्स कंपनी में इलेक्ट्रिक मीटर टेक्नीशियन के लिए 200 पद, छत्तीसगढ़ स्कोप स्किल फाउंडेशन कंपनी में कुक के 2, हेल्पर के 2, वेटर के 8, प्यून के 2, सिक्योरिटी गार्ड के 2 पद, पीपल ट्री ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100, केयर टेकर के 200 पद तथा स्टार आदर्श होम हेल्थ केयर सर्विस सोसाइटी कंपनी में केयर टेकर के 100 पद हैं। उन्होंने बताया कि रोजगार विभाग के नवीन निर्देशानुसार रोजगार मेला का आयोजन अब अनिवार्य रूप से ई रोजगार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। इसमें आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों का आधार से अपडेट एवं जीवित रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में सौदागर फिल्म का ये गीत। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

आयुक्त एवं पदेन सचिव छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर तथा राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति अंबिकापुर द्वारा जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म मधुमती से मुकेश की आवाज़ में। संगीत निर्देशन है सलील चौधरी का।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में पहले समाचार प्रभात, फिर मॉर्निंग न्यूज का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?

0: ओ, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुँचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे, इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
3: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
2: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे

0: पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुँचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असले तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांव कर कहनी। शीर्षक है परीक्षा। आलेख है शिवव्रत सिंह पावले का। वाचन है मृदुल गुप्ता और अंजनी कुमार पांडे के। संपादन अंजनी कुमार पांडे और प्रस्तुतकर्ता हैं प्रमेंद्र कुमार।

कथा श्रृंखला गांव कर कहनी में आज सुनिए सरगुजिया कहानी परीक्षा। आलेख शिवरत सिंह पावले का है, प्रस्तुत करता है प्रमेंद्र कुमार।

प्रस्तुत कहानी में एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी पत्नी बड़ी सुघड़ घरेलू महिला थी, जो अपने पति और घर परिवार का बड़ा ख्याल रखती थी। उसकी मेहनत से ही किसान गरीबी से निकलकर अब गांव में संपन्न किसान के रूप में जाना जाने लगा था। उसके तीन बच्चे थे। एक बेटे और बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करने के बाद जब किसान के छोटे बेटे की शादी की बात आई तो छोटे बेटे ने बताया कि वो एक लड़की को पसंद करता है और उसी से शादी करेगा। इस पर परिवार में बड़ा हंगामा हुआ क्योंकि वो लड़की दूसरी जाति की थी। बाद में किसी तरह सब राजी हुए और शादी उपरांत दोनों बहुओं के साथ हंसी खुशी रहने लगे। उम्र गुजरने के साथ किसान और उसकी पत्नी को लगा कि अब घर की जिम्मेदारी किसी एक बहू को दे देनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने दोनों बहुओं की परीक्षा ली, जिसमें छोटी बहू पास हुई और किसान ने घर की चाबी उसे सौंप दी। यही इस कहानी का सार है। तलई सुनी सरगुजिया कहानी परीक्षा।

0: एगुट गावे एगो किसान रहत रहिस। ओकर परानी ला बढ़ियन धरे जोगाए कर लूर रहिस। तबे दुयु झल्ला काहीं जायत कर कमी नी रहिस। दुयु सूर सुमेत ले खेती बारी कर काम करें और एक दूसर ला पूछे बिगर काहीं काम नी करें।
1: किसान कर परानी ला ओ जम्मो गांव गली कर मइनसे मन जब्बर सहराएं और कहें, एहर लक्ष्मी जीव है, एकर हाथ में बरकत है, हाथे माटी धरत सोना बन जाते।
0: गांव कर मइनसे जे कहत रहिन ओ फुरों बात रहिस। अपन परानिये कर चलते वो किसान बड़खा किसान बैन के गोटा गांव भर में इज्जत मर्जात पात रहिस।
1: ओकर परानी दिन में नहीं सफरे पखरे और काम करे में सफरे पखरे के ओतेक समय नहीं मिले। ओकर विचार रहे कि मोर जिंदगी कर आधार मोर घर गोसैया है, मैं सफर पखर के चेहरा चंडी चढ़ाहूँ ता ओ दूसर ला दिखाए बर है और ऐसन करे ले कयो झन कर नजर मोर उपरे लागही। तेकरे ले सफर हूँ पखर हूँ त मोर आदमी बर, जेकर ले उनकर नजर काकरो ऊपर झेन पड़े।
0: एकरे ले ओकर परानी रात के सफरे पखरे कोरे चीरे और गहना गांठी पहिर के अपन घर गोसैया कर गोड़ मिसे तब फिर सूते।
1: लक्ष्मी माता विष्णु भगवान कर चरण दबात रहिन। ओकर मानना रहिस कि अपन पति कर चरण दबाए ले लक्ष्मी माता खुश रथें और अन धन चौआ छुआ में घर ला कभो कमी नहीं होए दें।
0: किसान हर अपन परानी कर ढेरे इज्जत करत रहिस और जबर परेमु करत रहिस। पैसा रुपया और घर के चाभी जहो जायत ओकरे हाथे रहे। हरवाव चरवाव मंगन जोगी आल जाल जमूला लेना देना ओकरे हाथे रहिस।
1: ओकर परानी नहीं आए रहिस ते समय ओ किसान कर हालत बढ़िया नहीं रहिस। घरे मुस्टा मरत रहिस, सबे जायत कर दुख रहिस। बाकी जब ले ओकर परानी आइस तब पैला पसर मुठा ठोमहा

0: जोयर जोयर के धीरे धीरे जहों जात कर लहिस। रीटी घीटी काम करके और पेटे डोरा बांध के भंडार कसिन कर घर खड़ा कर देहिस। तभे तो किसान कर नाव गोट्टा गांव में रोट किसान कर गंती में आई गईस।
1: फूरो बात है कि नारी मन लक्ष्मी होते, अगर चाह लेहिन त घर परिवार ला आगू ले आगू बढ़ाए सकाते। आगी पानी उकर हाथे रहे और समझदारी नहीं करीन त घर परिवार छितिर छायन हो जाते। तेकरे ले नारी मन धीरज ढांढस ले काम करही त कैसनो काम हर बन जाते।
0: उमन कर दुई गोट बेटा और एगोट बेटी होइस। तीनों लड़िका सुखे सुख में बढ़िन फुरनाइन और बिहा करे लायक हो गईन। तब बढ़ियन खाता पिता किसान घर बिहा करे कर संजोग मढ़ाए ढारिन। फिर लागिन साइत देख के बेटी और बड़खा बेटा कर बिहा कर देहिन। छोटे बेटा हर बिहा करे बर अब बाँच गईस। उमन बेटी कर बलदा दमाद कर रूप में बेटा पाए गईन और बड़े बेटा कर बहुरिया कर रूप में बेटी पाए गईन।
1: उमन दुयु परानी एक बछर बीतीस ता छोटे बेटा कर बिहा करे बर एगोट गांवे लड़की ठौकाए ढारिन। लड़की कर दाऊ धाकड़ किसान रहीस। बातचीत दुनो बाइटले हो गईस और बिहा करे कर तय तपाटा मार गईस।
0: और ए बाट छोटे बेटा पड़ोसी गांव कर एगोट चंदा नाव कर लड़की ला ढेरेच पसंद करत रहीस। दुयो पति पत्नी बहन के जिंदगी बिताए बरी क्रिया कसम खाए ले रहिन। फिर एमहे ए अड़ंगा रहीस कि चंदा दूसर जायत कर लड़की रहीस और किसान घर के नी रहीस।
1: छोटे बेटा हर मोरदाई दाऊ तैयार नी होही कही के कहीं बात नी बताइस। बाकी मंगनी कर ढारीन त छोटे बेटा उ चंदा बयाइन।
0: चंदा तो सुघरई में जोनहैया रहीस। कंच कुंवारी छुट्टा सुघर छौड़ी लाम लहगर कनिहा ले खाले झूलत चवेर बरोबर चूंदी। ओठ बीरा पान खाल नियर लाल केवसी खीरा नियर बग बग ले देह दगली और आँख हर भौरा नियर लागे। तभे तो छोटे हर लोभाए रहीस।
1: उमन दुयो सोच उठाइन कि अब काहींच में नी बने। तेकरे ले छोटे बेटा चंदा ला घरे लाने पर सोच लेहिस। ढेर ले ढेर दुई चार दिन दाई दाऊ भड़ही तहाँ का करही। सोच के ओहर चंदा ला घरे ढुकू ले लानिस। आखिर दुयो जे जो सोचे रहिन ओहिच बात होइस। ओकर दाई भणे लागिस। नेरे छोटे तय हमार नाक कटवाए के राख दे है आए? हमन कहो मुंह दिखाए लायक नी रह गए। अरे छोटे बेटा रहे बढ़ियन धूम धाम ले तोर बिहा कर रतेन त सब मछरी बेंगे बेंग कर दे रे तय आए? हार में तोर हरदी नी लगी त मसान बनबे। छोटे बेटा तरी मुड़ कर के चुप्पे चाप सुनत रहीस। उकर दाऊ हर अपन परानी ला कहीस।
0: ए बाबू करदाई, अरे जे होइस ते होइस, अब का करबो? अरे नगदे भड़े अब तो चुप रह जी। अरे हमर घरे आई से वहू तो लक्ष्मी है आए? अरे अपन दाई दाऊ घर परिवार सब छोड़ के आई गईस ता ए जग हम ही मन तो ओकर दाई दाऊ हवन और सब जायत हवन। घरे बिहा कर देबो और कथा बर्ता सुनवाए देबो, अब रहे दे।
1: तब ओकर परानी चुपाइस। किसान हर ओइसने करिस। घरे मड़वा गाड़ के दुयो झन कर बिहा कर देहिस। चंदा दूसर सगा रहीस तेकर ले जायत सगामन जबर आयट छेक करीन। किसान हर दंड जुर्माना भरीस और सगा बाबा कुटुब कबीला गांव घर जमूला नगद बोकरा भेड़ा खवाइस पियाइस। फिर कथा सुनवाए देहिस तहाँ सूर सुमेत ले रहे लागिन।
0: बड़खा बहुरिया और छोटे बहुरिया दुयो देवरानी जेठानी काम बुता में झेन पूछा। नरजी के तौल रहिन और तितकी नियर नाचें। एक ले बढ़ के एक दुयो लक्ष्मी बहुरिया रहिन।
1: एक दिन किसान हर अपन परानी जग कहिस।
0: ने बाबू करदाई, अब हमन बुढ़ाए गेन जी। ढोड़गा कहत है कि आओ आओ और टिकरा कहत है जाओ जाओ। पाकल आमा नियर कब टपक जाबो तेकर ठिकाना नहीं है। तेकर ले मैं सोचत हूँ कि दुयो बहुरिया में एक

0: धनकर हाथ पायत कर के चाबी दे देतेन। बाकी कौन ला जिम्मा देहल जाए मैं नी समझ पर आत हूं।
1: ने जी, बड़खा बहुरिया ला दे देह रतेन, काबर की वो बड़खा है और हमन अपन पसंद में बर बिहा कर के लाने हन ओला।
0: ओ तो ठौके कहत हस, बाकी हमन ला तो तोर कसिन घर चलाए वाला चाही, तब्बे घर परिवार आगू बढ़ी ना।
1: तब बड़खा बहुरिया में का कमिया है?
0: ठीक है, बाकी मैं दुइयो बहुरिया कर परीक्षा लेह चाहत हूँ। ओमहे पास हो जाही तही लाचा भी सौंपना है।
1: उकर परानी बात मान गईस। रोपा बीड़ा कर समय चलत रहीस। दुइयो बहुरिया खेते रोपा जगाए गए रहीन। खेत ले साइन जुग घरे आईन। किसान हर दुइयो बहुरिया ला एक एक लोटा पानी दे के गोड़ धोए बर कहीस।
0: बड़खा बहुरिया हलंग हलंग उजलैस करिस और फेर एक लोटा पानी मांगिस। किसान फेर एक लोटा देहिस। बड़खा बहुरिया फेर हलंग हलंग उजलैस करिस और फेर अपन ससुर जग पानी मांगिस। ससुर फेर एक लोटा पानी देहिस, तब ओकर गोड़ धोवाए पारिस। बाकी छोटे बहुरिया एके लोटा में अपन गोड़ धोए ढारिस। किसान और ओकर परानी ए सब ला देखत रहिन।
1: वही दिन किसान हर दुइयो बहुरिया ला समझाए कि कहीस,
0: देखा गे बेटी हो, अब हमर जांगर थक गईस, तेकरे ले मैं तुमन कर परीक्षा लेहत रहन, जे में छोटे बहुरिया पास हो गईस। बड़खा बहुरिया ला तीन लोटा पानी देहन, तब गोड़ धोए पारिस। बाकी छोटे बहुरिया एके लोटा में अपन गोड़ हाथ धोए ढारिस। छोटे बहुरिया कर हाथ में बरकत और बचत करे कर गुना है।
1: पानी हमर जिनगानी है, बिगर खाए पांच दिन ले रह जाबो तबो ले नी मरन, बाकी पानी बिगर एक दिन जिए नी सकन। तेकरे ले पानी कर बचत करना जरूरी है। जेहर पानी कर बचत कर लहीस ओहर जहो जायत कर बचत कर सकत है। किसान आघू कहीस,
0: तेकरे ले बड़खा बहुरिया ते नाराज झेन होवे, मैं छोटे बहुरिया ला चाभी सौंपत हूँ।
1: इतरा कही कि किसान हर अपन छोटे बहुरिया ला चाभी सौंप देहिस। छोटे बहुरिया ओते कादर पाए के गदगद हो गईस और अपन अचरा में खुशी कर आंसू ला पोछत। सास ससुर जेठ जेठानी और अपन घर गोसैया कर गोड़ छुई छुई के जोहार लेहे लगीस। कथा श्रृंखला गांव कर कहनी में अभी आप सुन रहे थे कहानी परीक्षा। आलेख शिवव्रत सिंह पावले का था। प्रस्तुति सहयोग और वाचन स्वर अंजनी कुमार पांडे और मृदुल गुप्त का। प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार। गांव कर कहनी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे एक और कहानी। आज बस यहीं तक।

0: 260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सामुदायिक गीत प्रशिक्षण पाठ कन्नड़ भाषा में। गीतकार है GDR गौड़ा।
1: सब लोग आ गए हैं ना?
2: हाँ, आ गए।
1: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
2: मारुति संगीत पाठशाला।
1: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
2: हाँ।
1: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
2: हाँ, सिखाएंगे।
1: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
2: दोड्ड रंगे गौड़ा।
1: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
2: हाँ, तैयार है।
1: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
2: कडल हक्कीगळु।
1: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
2: हाँ।
1: तो बाद में हम

0: गौड़ा।
1: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
0: हाँ तैयार है।
1: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्की गड़ू। क्या है?
0: कडल हक्की गड़ू।
1: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
0: हाँ।
1: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
0: हाँ।
1: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
0: हाँ।
1: रख लिया है?
0: हाँ।
1: अच्छा तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप हाँ। सब लिख लीजिए। हाडू तिहवो हारू तिहवो
0: हारू तिहवो हारू तिहवो
1: कडल करेय खग कुला
0: कडल करेय खग कुला
1: यनी तो मुगिला
0: यनी तो मुगिला
1: उद्द अगला
0: उद्द अगला
1: जी
0: की दानी तू
1: बांदड़ा
0: बांदड़ा।
1: अच्छा तो एक पहला स्टंजा है।
0: हाँ?
1: आगे का स्टंजा है बान लोक नगुव नाका
0: बान लोक नगुव नाका
1: हारो हक्की पालीगे
0: हारो हक्की पालीगे
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
1: लिख लिया?
0: हाँ।
1: सब लोग लिख लिया?
0: हाँ।
1: अच्छा तो अगला स्टंजा दूर दूर हारी हारी
0: दूर दूर हारी हारी
1: व्योम कानुआ बगे
0: व्योम कानुआ बगे हसी व मरेसी
1: वांछे मेरेसी
0: वांछे मेरेसी
1: दिगंत सेरो लघु बगे
0: दिगंत सेरो लघु बगे।
1: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा
0: हाँ।
1: वो भी सुना दो।
0: हाँ।
1: लिख लेते हैं।
0: हाँ।
1: याव नाडो यंथ काडो
0: याव नाडो यंथ काडो
1: हारो आसे हक्कीगे
0: हारो आसे हक्कीगे
1: मुक्त गगन नूरु काला
0: मुक्त गगन नूरु काला
1: ईजो शक्ति रेक्केगे
0: ईजो शक्ति रेक्केगे।
1: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
0: हाँ। हाँ।
1: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम हो रहा है ना?
0: हाँ।
1: अच्छा जी जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
0: हाँ?
1: हाँ। को हम रिक्वेस्ट कर देंगे।
0: हाँ? हाँ।
1: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब एक गाना सीखना चाहते हैं, पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे।

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजे के दिखाते हैं ना।
1: धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन से राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।
2: तकिता तकिता तकिता तकिता

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हो रहे ना, तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती है।

अब ये आखिर का अंतर जो है ना वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुना का, उसी के जैसी है। अच्छा तो गाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक गीत प्रशिक्षण पाठ मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

जहाँ शब्दों की मिठास और सुरों की मधुरता मिलकर आपके लिए मनोरंजन, जानकारी और प्रेरणा का सुंदर संगम प्रस्तुत करती हैं। मैं हूँ आपके अपनी रेडियो साथी प्रियंका, और अगले कुछ पलों तक हम साथ साथ करेंगे बातें और सुनेंगे सुरीले गीत।

साथियों, कार्यक्रम गुंजन में हम चर्चा करने जा रहे हैं मानवता सेवा और जीवन दान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण विषय पर। आज 14 जून है और पूरे विश्व में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है। साथियों, जीवन में कुछ उपहार ऐसे होते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती। रक्त भी ऐसा ही एक अनमोल उपहार है जो किसी व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। जब कोई मरीज अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा होता है, तब एक रक्तदाता की छोटी सी पहल उसके लिए उम्मीद की नई किरण बन जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ और करेंगे और चर्चा, पर पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म है आदमी खिलौना है, गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज, गीतकार है समीर और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: साथियों, हम बातें कर रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस पर। साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस की शुरुआत वर्ष 2004 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना और रक्तदाताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। और आपको बता दें कि 14 जून की तिथि का चयन भी विशेष महत्व रखता है। यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्होंने एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। इस खोज ने चिकित्सा विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और लाखों लोगों के जीवन को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं आरजो फिल्म का ये गीत। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और धुन बनाई है अनु मलिक ने। गायक कलाकार हैं अनु मलिक और उदित नारायण।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

साथियों, रक्त ना तो किसी फैक्ट्री में बनाया जा सकता है और ना ही किसी मशीन से तैयार किया जा सकता है। इसकी पूर्ति केवल एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वैच्छिक रक्तदान से ही संभव है। हर दिन हजारों मरीजों को दुर्घटनाओं, कैंसर, बड़ी सर्जरी और प्रसव जैसी स्थिति में रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे में रक्तदाता किसी देवदूत की तरह सहायता करते हैं। रक्तदाता सिर्फ चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। ये वो सेवा है जिसमें दान करने वाला व्यक्ति किसी को जानता नहीं, फिर भी जिंदगी बचाने में आगे आता है। यही मानवता की सबसे सुंदर पहचान है। समाज में रक्तदान को लेकर कई भ्रांतियां भी हैं, जबकि चिकित्सीय दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति के लिए रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित है। इसलिए डर या संकोच छोड़कर हमें इस नेक कार्य में भागीदारी निभानी चाहिए। साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस पर आइए हम भी संकल्प लें कि रक्तदान करेंगे और लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि किसी की जिंदगी बचाने से बड़ा और कोई पुण्य नहीं हो सकता। रक्तदान है जीवन दान, इससे बढ़कर नहीं कोई दान। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा। फिल्म दिल जले से गायक कलाकार है उदित नारायण, गीतकार हैं जावेद अख्तर।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन, अपनी रेडियो साथी प्रियंका के साथ। साथियों, अपार आईडी यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री या विद्यार्थियों की एक डिजिटल शैक्षणिक पहचान है। इसके माध्यम से छात्र छात्राओं के शैक्षणिक रिकॉर्ड जैसे अंक सूची, प्रमाण पत्र और उपलब्धियां सुरक्षित रूप से डिजिटल रूप में संग्रहित की जा सकती हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू की गई यह पहल विद्यार्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों को एक जगह सुरक्षित रखने और उन्हें आसानी से उपलब्ध कराने में मदद करती है। सरल शब्दों में कहें तो यह विद्यार्थियों के लिए शिक्षा जगत का एक डिजिटल पहचान पत्र है। साथियों, अपार आईडी शिक्षा को आधुनिक, सरल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला नगमा, फिल्म जान तेरे नाम से। गायक कलाकार हैं कुमार शानू और आशा भोसले। संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का।

आप भी हैं क्रिकेट के दीवाने तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का दिन हर एक भारतीय के लिए बेहद खास और रोमांच से भरा होने वाला है। जी हाँ, महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज वो महा मुकाबला होने जा रहा है जिसका इंतजार पूरी दुनिया को रहता है। मैदान पर आमने सामने होंगी चीर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान की टीमें। रोमांच, जोश और जुनून से भरपूर ये हाई वोल्टेज मैच बर्मिंघम के ऐतिहासिक एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। तो अपनी घड़ियों में अलार्म लगा लीजिए, क्योंकि यह ब्लॉकबस्टर मुकाबला भारतीय समयानुसार आज शाम ठीक 7 बजे शुरू होने जा रहा है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो यहाँ भी हमारी विमेंस इन ब्लू यानी हमारे भारत की बेटियों का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए कुल T20 मुकाबलों में से 13 में भारतीय टीम ने तिरंगा लहराते हुए शानदार जीत दर्ज की है, और इसी इतिहास को देखते हुए आज भी करोड़ों देशवासियों को अपनी शेरनियों से एक और ऐतिहासिक प्रदर्शन की उम्मीद है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत। फिल्म है गुंजन सक्सेना, गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह।

साथियों, आज 14 जून को हिंदी फिल्म जगत की प्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती जी का जन्मदिन है। 14 जून 1971 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में प्रीतम जी का जन्म हुआ। पिछले 2 दशकों से वे बॉलीवुड संगीत जगत में अपनी मधुर धुनों से श्रोताओं का दिल जीत रहे हैं और अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। प्रीतम जी को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आइए सुनते हैं प्रीतम जी के संगीत निर्देशन में वो लम्हे फिल्म का गीत केके की आवाज़ में।

साथियों, अब हम बात करने जा रहे हैं रज पर्व की, जो ओडिशा का एक अत्यंत लोकप्रिय और सांस्कृतिक महत्व वाला लोक पर्व है। इसका पहला दिन पहली राजा कहलाता है। यह उत्सव 3 दिनों तक मनाया जाता है और नारित्व प्रकृति तथा मानसून के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। साथियों, ओडिशा में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इन दिनों धरती माता रजस्वला होती हैं, इसलिए भूमि को विश्राम दिया जाता है और खेती बाड़ी के कार्य नहीं किए जाते। महिलाएं और युवतियां नए वस्त्र धारण करती हैं, झूले झूलती हैं, लोक गीत गाती हैं और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेती हैं। रज पर्व केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि नारी शक्ति के सम्मान और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर भी है। यह हमें सिखाता है कि जैसे धरती जीवन का आधार है, वैसे ही नारी सृजन और संवेदनाओं की आधारशिला है। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत। फिल्म है हेलो ब्रदर, गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अलका याग्निक।

साथियों, गर्मी अपने अंतिम पड़ाव पर है और अब हर किसी की निगाहें आसमान की ओर टिकी हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की दस्तक धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों में सुनाई देने लगी है। काले बादलों की आवाजाही, ठंडी हवाओं के झोंके और मिट्टी की सौंधी खुशबू इस बात का संकेत है कि मानसून आने वाला है। मानसून केवल बारिश नहीं लाता, बल्कि अपने साथ नई ऊर्जा, हरियाली और उम्मीदें लेकर आता है। किसानों के लिए ये मौसम विशेष महत्व रखता है। अच्छी वर्षा बेहतर फसल समृद्धि का आधार बनती है और बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई बारिश की फुहारों का आनंद लेने के लिए उत्साहित रहता है। साथ ही इस मौसम में सावधानियां भी बहुत जरूरी है। साथियों, मानसून की सुहानी आहट का स्वागत करें और अब सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत फिल्म फना से, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों।

जिनका जन्म 14 जून 1989 को उत्तराखंड देहरादून में हुआ। जुबिन नौटियाल ने अपनी सुरीली और भावपूर्ण आवाज से संगीत जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। उन्होंने कई गीत गाए हैं और ढेरों गीतों ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बनाया। अपने शानदार गायन के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। तो आइए जुबिन नौटियाल की आवाज में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, जीवन के हर पल को संगीत की तरह मधुर बनाते रहिए। इसी शुभकामना के साथ बातों की खुशबू और गीतों की मिठास लिए गुंजन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नई सुबह, नई सोच और नए शुरू के साथ। दीजिए अपनी रेडियो साथी प्रियंका को कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को है। कुछ ही पलों में ये प्रादेशिक समाचार हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आज सुबह एक वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम के जरिए नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया गया। जशपुर अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया। और जगदलपुर में आयोजित बस्तर आम महोत्सव में किसानों ने आम की 2000 से अधिक प्रजातियों का प्रदर्शन किया। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के तहत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आज सुबह एक वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम के जरिए सबसे अधिक दर्शक का नया विश्व रिकॉर्ड बनाना था। इसके जरिए विश्वभर के योग अभ्यासकर्ताओं और वेलनेस उत्साहियों को एक डिजिटल मंच पर एकत्र करने का प्रयास किया गया। यह ऑनलाइन योग सत्र सुबह 6:15 से 7:35 तक आयोजित किया गया। इसमें करीब 130 देशों से भागीदारी की गई। जशपुर जिला अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया है। करीब 292 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन जशपुर को पहली बार राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। इससे किसानों, व्यापारियों और युवाओं को लाभ मिलेगा। क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कल राजधानी रायपुर में आयोजित

छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में एनएचएम कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एनएचएम कर्मियों के 33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने एनएचएम कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई आज जांजगीर चांपा जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे नवागढ़ विकास खंड के ग्राम पोड़ी में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सत्य निज सत्संग सम्मेलन में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू करेंगे। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल 16 जून से ही शुरू होंगे। विभाग ने बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर 1 जुलाई से सत्र शुरू होने की सूचना प्रसारित की जा रही है, जो पूरी तरह भ्रामक और फर्जी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। जगदलपुर में आयोजित बस्तर आम महोत्सव में किसानों ने आम की 2000 से अधिक प्रजातियों का प्रदर्शन किया। महोत्सव में बस्तर सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आए 1500 से अधिक किसान शामिल हुए। यहां पारंपरिक, उन्नत और हाइब्रिड किस्मों के आम आकर्षण का केंद्र रहे। सांसद महेश कश्यप ने प्राकृतिक रूप से तैयार आमों को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में जैविक खेती और आम से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाने की जानकारी भी दी गई। नया रायपुर के सिंध लेक में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर एवं सब जूनियर प्रतियोगिता के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। सब जूनियर बालक वर्ग के C2 500 मीटर में दीपक और लक्ष्य की जोड़ी ने, जबकि C4 500 मीटर में सैमसंग तोरण साहू, गणेश साहू और लाइसिम्बा की टीम ने स्वर्ण हासिल किया। प्रतियोगिता में 24 राज्यों के करीब 800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सक्ती जिले के मालखरौदा के छापोरा में भारतीय स्टेट बैंक की फर्जी शाखा संचालित करने और नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपी को मालखरौदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में पहले भी मुख्य आरोपी अनिल भास्कर सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के खरवे गांव में कथित जहरीली शराब पीने से 4 महीने के भीतर 8 ग्रामीणों की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने मामले की जांच के लिए कसडोल थाने का घेराव भी किया था। ग्रामीणों के आंदोलन को देखते हुए शनिवार को पुलिस और राजस्व अफसरों की मौजूदगी में शव को कब्र से खोदकर निकाला गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आज सुबह एक वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम के जरिए नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया गया। जशपुर अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया। और जगदलपुर में आयोजित बस्तर आम महोत्सव में किसानों ने आम की 2000 से अधिक प्रजातियों का प्रदर्शन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार हम रायपुर के केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। आइए जानते हैं तापमान सूचना। मौसम विभाग कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार अंबिकापुर शहर का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान सूचना समाप्त। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा और उनका प्रसारण समय।

आप मन के गीत शाम 6:05 पर, कार्यक्रम जिले की चिट्ठी और कार्यक्रम कानून की बात शाम 6:30 पर हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित लोकप्रिय फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद हम लेकर आएंगे 11:05 पर। मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग हम पेश करेंगे दिन के 12 बजे। कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण समय होगा दिन के 1:05 पर। बहनों का कार्यक्रम घर आंगन हम लेकर आएंगे दिन के 1:10 पर। श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम ईमेल की गूंज हम प्रस्तुत करेंगे दिन के 1:40 पर और शेष भाग आप सुनेंगे 9:30 पर।

गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा हम पेश करेंगे दिन के 2:30 पर। सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट से शाम 5:00। सोशल मीडिया पर आधारित लोकप्रिय कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश का आनंद आप लेंगे रात 8:00। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर और युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी हम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। शाम 5:05 पर कार्यक्रम भजन संध्या का समय होगा। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा हम पेश करेंगे शाम 7:05 पर। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का समय होगा रात 9:15 पर।

ये थी हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा और उनका प्रसारण समय। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में, फिल्म गदर 2 से।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम नए तराने में आइए सुनते हैं फिल्म रुस्तम का ये गीत। आतिफ असलम की आवाज़ में गीतकार हैं मनोज मुंतशिर।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कार्यक्रम नए तराने में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सनम पुरी की आवाज़ में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म का ये गीत। संगीत निर्देशन है अनवीता दत्त का।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम में प्रस्तुत है जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में जुनैद वैसी का लिखा ये गीत। संगीत निर्देशन है चितरंजन भट्ट का।

अभी आप सुन रहे थे जॉली LLB 2 फिल्म का गीत। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं स्त्री फिल्म का ये गीत। संगीत निर्देशन है सचिन जिगर का, गायक कलाकार है एस किंग और सचिन जिगर

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगा तो ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगू तो ए दे बरधा मान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं
0: हाँ?
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउर ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: तहाँ
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के।
1: हाँ।
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी ये सुन सकते
1: है। हाँ, अभी तो शुरू है कि साहे।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत निर्देशन है विशाल शेखर का। गायक कलाकार हैं अभिजीत श्रीवास्तव।

कार्यक्रम में प्रस्तुत है तुलसी कुमार और केके की आवाजों में आशिकी 2 फिल्म का ये गीत। शब्द रचना है इरशाद कामिल की और धुन बनाई है जीत गांगुली ने।

कार्यक्रम नए तराने में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नेहा कक्कर, मीका सिंह और कुमार सानू की आवाज़ों में सिम्बा फिल्म का गीत। शब्द रचना है सब्बीर अहमद की और धुन बनाई है तनिष्क बागची ने।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता।

0: सफलता का सच्चा साथी।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। प्रस्तुत है ये अगला गीत दम लगा के हैसा फिल्म से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और साधना सरगम। गीतकार हैं वरुण ग्रोवर और संगीत निर्देशन है अनु मलिक का।

कार्यक्रम का अगला गीत है पागलपंती फिल्म से नेहा कक्कर और मिक्का सिंह की आवाज़ों में। गीतकार हैं शब्बीर अहमद और संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजिए और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
3: कार्यक्रम नए तराने का आखिरी गीत हम सुनवाने जा रहे हैं आपको प्रेम रतन धन पायो फिल्म से। गायक कलाकार हैं दर्शन रावल, पलक मुच्छल और साथी। संगीत निर्देशन है हिमेश रेशमिया का।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर

0: किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मानसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुँचने की संभावना है। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। फीफा विश्व कप में स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद जीत दर्ज करते हुए हैती को 1-0 से हरा दिया। जॉन मैकगिन के पहले हाफ में किए गए गोल की बदौलत स्कॉटलैंड ग्रुप सी में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी।
2: हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है आप सभी के पत्रोत्तर पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में मैं कल्पना सिन्हा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं आमिर जमाल की आवाज़ में फिल्म मर्डर का गीत। शब्द सईद कादरी के हैं और संगीत अनु मलिक का है। इस गीत के लिए पत्र भेजा है हमारे इन श्रोता साथियों ने, अडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, राहुल वर्मा, गोपी वर्मा, भूपेश वर्मा, दीपेश वर्मा, यह है जिला बेमितरा से। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतेक विरक और मीका विरक। ग्राम दुर्राबाना भाटापारा से प्रमोद कुमार साहू, देव कुमार, नेत्राम साहू, भूपेंद्र साहू और विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गोहाणकर, वैशाली गोहाणकर, कुमारी ध्वनि गोहाणकर परी, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गोहाणकर राही, सरिता गोहाणकर, सिद्धांत गोहाणकर, बंटी, प्रिंस और एकांश। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर यह गीत।

श्रोता साथियों के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद इस समय आप सुन रहे हैं और मैं हूँ इस समय आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर कल्पना सिन्हा। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले पायदान पर आइए अब सुनते हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म खिलाड़ी का गीत। शब्द अनवर सागर के हैं और संगीत जतिन ललित का है। पत्र भेजने वाले हमारी श्रोता साथी हैं ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, श्रीमती जानकी प्रजापति घनश्याम, हरिशंकर प्रशांत और रत्नेश प्रजापति। ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता पांडेराम राजवाड़े, सारसताल सोनगरा से प्रेम साय राजवाड़े रूप साय मेड़साय और उनके साथी, प्रेमनगर से मधुसूदन प्रजापति, सुखमनिया प्रजापति, झिलमिल प्रजापति और रिद्धि सिद्धि। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अदान अब्बासी। बागबहरा भदरसी से हैं पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय बेबी अनिष्का और राधिका गजभिये। यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से। जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र तिवारी, महेंद्र तिवारी। अस्तु भागलपुर से प्रदीप कुमार बिहारी, आशीष बिहारी, कुंदन बिहारी, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल और तान्या सिंगरौल। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म खिलाड़ी का ये गीत जिसमें आवाज़ें हैं अलका याग्निक और अभिजीत की।

कार्यक्रम आपकी पसंद के अगले पायदान पर आइए आप सुनते हैं मुस्तफा जाहिद की आवाज में फिल्म एक विलेन का गीत। सुनने वाले हमारे श्रोता साथी हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बेटा बजाज और साहिल, धरसीमा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा और अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद

अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शराब खत्री। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गाव्या और भाई सुच्या पाठक। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेंगी से भागवत वर्मा। तो ये रही श्रोता साथियों आपकी पसंद आपकी नज़र।

अनुराधा पौडवाल और अभिजीत के युगल स्वर में अभी आपने सुना फिल्म सड़क का गीत। सुनना चाहते थे अमरपुर पेंड्रा से रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी और दीशा श्रीवास्तव, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया, नैनदास दीवान, शीला दीवान, ओम प्रकाश, रुखमणी दीवान, जयप्रकाश, प्रीति दीवान, सिद्धांत, शौर्य, कुमारी सानवी, फुलसर कटगोरा, चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से हमारे ये साथी हैं, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता नेभवानी, आकाश नेभवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा सीता सागर, आयुषी हनी और उनके परिवार के सदस्य, कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू वंदना और उनके परिवार के सदस्य, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से सुनना चाहते थे कुमारी वंदना परी, गणेश मराठा, कार्तिक भाव मराठा, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता खर्चे और नारायण भाव खर्चे। श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आवारगी का गीत। इस गीत को सुनना चाहते हैं रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से खुशी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से, उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर हमारे कुछ और साथी हैं जो इस गीत को सुनना चाहते हैं। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, अनिता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिल्दा से हरीश कमल सेतपाल भूमिका और सुशीला दादी।

कल्पना सिन्हा। श्रोताओ, कार्यक्रम के अगले पैदान पर आइए अब सुनते हैं मुकेश की आवाज में फिल्म पहचान का गीत। शब्द रचना नीरज शंकर की है और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का है। सुनना चाहते हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा। बागपत उत्तर प्रदेश से मास्टर मुनीर खान, संजय ढिंगिया और सत्तार अब्बासी। गांव फ्रासी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। हांसी शहर से राजू मेघलानी, बबीता मेघलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटाई से हमारे साथी हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा।

और अब पेश है इस कार्यक्रम का अंतिम गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दो रास्ते। सुनने वाले हमारे श्रोता साथी हैं शिवाजी चौक राजिम से ही अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, सुरुचि देवी हैं और उनके साथी हैं श्री श्रृंगी, ऋषि महानदी, सिहावा पर्वत ग्राम बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतिन बाई, मोतिन बाई मानिकपुरी, गांव गणेश धाम परसुली, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हमारे ये साथी हैं, अरविंद कुमार यादव, रुस्तम यादव, हिमांशु, अनुष्का और मनोज यादव, सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर जिला सूरतपुर से हैं, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं, जरुड़ वरुड़ जिला अमरावती से, बाबा साहेब वाड़ोदे, आदि चरपे आर्या वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म दो रास्ते का ये गीत।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म दो रास्ते का गीत, शब्द आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इसी गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद समाप्त होता है। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। अब प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आयुष मंत्रालय ने आज सुबह वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया। 130 से अधिक देशों ने की भागीदारी। जशपुर अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। अब समाचार विस्तार से। आयुष मंत्रालय ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित कार्यक्रमों के तहत आज सुबह मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया। 130 से अधिक देशों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। इस आयोजन का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्वभर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम पर सर्वाधिक दर्शकों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। जशपुर जिला अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया है। करीब 292 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन जशपुर को पहली बार राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। इससे किसानों, व्यापारियों और युवाओं को लाभ मिलेगा। क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल 16 जून से ही शुरू होंगे। विभाग ने बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर 1 जुलाई से सत्र शुरू होने की सूचना प्रसारित की जा रही है, जो पूरी तरह भ्रामक और फर्जी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। आज विश्व रक्तदान दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव माधव ने देशवासियों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा और श्री जाधव ने सोशल मीडिया पोस्ट में रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। इस वर्ष विश्व रक्तदान दिवस की थीम है, मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं। बिलासपुर में एनटीपीसी सीपत के बालिका सशक्तिकरण अभियान का कल समापन हो गया है। 4 सप्ताह तक चले इस प्रशिक्षण में 121 ग्रामीण बालिकाओं ने

0: योग, आत्मरक्षा, कंप्यूटर, संवाद कौशल और अंतरिक्ष विज्ञान सहित कई विषयों पर प्रशिक्षण लिया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अभिभावकों से बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर देने की अपील की। एनटीपीसी परियोजना प्रमुख स्वप्न कुमार मंडल ने हर वर्ष 10 मेधावी बालिकाओं को कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा मोर गांव मोर पानी महाअभियान के तहत जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने श्रमदान कर एक ही दिन में 2000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया। अभियान का उद्देश्य वर्षा जल संचयन बढ़ाना, भूजल स्तर सुधारना और ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। कोरबा कटघोरा मार्ग पर छुरी के पास राखड़ से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे की वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कटघोरा पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क से हटाया। इस दौरान करीब घंटे भर तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। रायगढ़ जिले में जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद कैदी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए और मौत को लेकर हंगामा करने लगे। परिजनों ने जेल में मारपीट का आरोप लगाया, जबकि पुलिस और जेल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आयुष मंत्रालय ने आज सुबह वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया। 130 से अधिक देशों ने की भागीदारी। जशपुर अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए अपेश है मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग।

पंकज आवाज की संगीत निर्देशन में और उन्हीं के स्वर में अभी आपने सुना ये परंपरागत रचना। आइए अब सुनते हैं ये संदेश।

0: बरधा मान ले खेत ला जोतत रहे है नहीं बेरा हर ज्यादा लगे मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने
1: कौन कार्यक्रम ला
0: ये दे किसान वाणी
1: हाँ
0: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में
1: हाँ?
0: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसो हूँ बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं ताहा तो
1: राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
0: हाँ
1: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी ये सुन सकते
0: है हाँ, अभी तो शुरू है कि साहे
1: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
0: किसान वाड़ी।

0: राम राम हो विष्णु भैया।
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही
1: कैसे कहिया विष्णु भैया। ए दे आगू

मिश्रित गीत संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अलीशा चिनॉय की आवाज में ये गीत। शब्द रचना अलीशा चिनॉय और श्याम अनुरागी की है, संगीत निर्देशन बिद्दू का है।

0: मेड इन इंडिया। श्रोताओं, अभी आपने ये गीत सुना अलीशा चिनॉय और साथियों की आवाजों में। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230 600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230 600।
1: अरे वाह, 07774 230 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

फाल्गुनी पाठक के स्वर में अभी आपने ये गीत सुना और अब आइए सुनते हैं सोनू निगम का गाया ये गीत। शब्द शहाब अल्लाहवादी के हैं और संगीत निर्देशन रवि पंवार का है।

सोनू निगम के गाए इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाज में ये गीत। शब्द रचना रश्मि विराग की है और संगीत निर्देशन पायल देव का है।

इसी गीत के साथ ही मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 होने वाले हैं कुछ ही पलों में। कार्यक्रम आप मन के गीत हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के कार्यक्रम आप मन के गीत सुनैया जम्मू संगवारी मनला प्रवीणा त्रिपाठी के राम राम संगी हो। आप मन के अब्बड़ पोस्ट कार्ड और ईमेल हमला मिल चुके हवे ता अब शुरू करन आज के कार्यक्रम आप मन के गीत। पहले गीत ला सुनवावत हन आप मनला कन्हैया लाल डटसेना जानकी बाई और साथी मन के स्वरमा और एला सुने बर ईमेल पठो आप मन इंदिरा नगर भमरपुर ले राधेश्याम देवांगन चंपा राजू नेहा जगदीश देवांगन धरसिंवा ले छेदूलाल यादव श्रीमती सीता अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना रानू खुशी प्रवीण साहू इकबाल कुरैशी दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव पुष्पलता अर्पिता अभिनव बलदाऊ राजेश्वरी आस्था प्राची प्रियल अनुराग अभिषेक डुग्गू कान्हा यादव सिंगारपुर पैलीमेटा ले चिंताराम धुर्वे कामेन चंद्रध्वज सानू धुर्वे सलोनी घुमका ले देवचरण साहू हेमा वेदांत वैभव साहू जैसा कर्रा चारामा ले असाडू राम निषाद खिलावन ऋषभ निषाद मड़ौदा जालबांधा ले पारखदास साहू किरण साहू दत्रिंगी भाटापारा ले हीरामणि वर्मा पारसमणि पुष्पेंद्रमणि नोखेलाल वर्मा सलोनी राजनाथ गांव ले प्रियांशु और गौरव साहू रोहासी ले डगेसर राम साहू नूतन गौरव घनश्याम साहू तेंदुभाटा मगरलोड ले उमेंद कुमार निषाद महेश्वरी देविका पोषण और नूतन निषाद और परसा टोला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी तुषारणी खुमेंद्र मसिया और पाती पठो आप मन नेहरू आठ भाटापारा ले प्रेमलाल साहू भूपेंद्र साहू दुष्यंत और राघवेंद्र साहू देवकर ले संतोष केशरी उर्मिला प्रियंका शुभम भाटापारा ले श्याम रतन मुंदड़ा रचनाकार मुंदड़ा रावण भाटा भाटापारा ले बबला यादव रिखी राम यादव श्रीमती कमलेश्वरी यादव

सिद्ध बाबा भाटापारा ले कामता यादव, सोनमत यादव, मन्नू, निकिता यादव, मोती गार्डन भाटापारा ले मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार, चिंटू, युग कुमार झेरिया, शिवरी नारायण ले धर्मेंद्र केशरवानी, योगेश, मोनिका, राजेश केशरवानी, औ भाटापारा ले रामकुमार राउत, अमरीका, गणेश, कार्तिक औ युवराज राउत। तो आओ सुने जाए आपन के पसंद माँ कन्हैया लाल डटसेना, जानकी बाई और ओखर साथी मन के गाए ए लोकगीत।

कार्यक्रम के अगले गीत ला स्वर दे हे कौशल कुमार भानु और उर्मिला देवांगन और एला सुने बर ईमेल और पाती पठोयो आप मन भड़गा कोदवा गुड़ान ले श्याम सिंह मरावी राजकुमारी रानी रजनी राहुल पूजा मरावी कुई ग्राम भंगी टोला ले ननकाराम ध्रुवे जामुनबाई फिरत राम मालती ध्रुवे देवरी भाटापारा ले गलनूलाल रजक पुनेश्वर रजक फानेश्वर उमेश कुमार राम कुमार विक्की सेन गुड़ा राज ले मनोज साहू श्रीमती चित्रेखा देवेंद्र लवीना चंचल वासनी गरिमा साहू सहा मालगी ले सुखनंदन चंद्रवंशी शिवरानी आकाश प्रतिभा पूर्वी पूनम चंद्रवंशी मोरेंगा राजिम ले खुमान सिंह पटेल तेजेश्वनी मिष्टी एकांश पटेल गंडई पंडरिया ले शिवा यादव राज चिंटू तरुण यादव कन्हैया निर्मला चुवाराम कुमार यादव पलारी ले नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद पराग टेलर तनुजा ईशांत देवांगन सोंगा मगरलोड ले फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी गजेंद्र कुमार चंदन मोहित कुमार देविका रानी हेयांश कुमार चंदन लोरमी चचेड़ी ले मोहन सिंह मरावी सविता रिंझा तनु राही जगदीश सिंह सावित्री चमन अमन सुमित मरावी कोयलारी कवर्धा ले कैलाश चंद्राकर मुकुंद पूर्णेंद्र साहिल चंद्राकर बोगाटोला मोहला मानपुर ले मानिक राम सिन्हा सविता देवी सिन्हा तारामती मुनिंद कुमार इंदु और चांदनी सिन्हा और पोस्टकार्ड भेजो आप मन सुभाष वार्ड भाटापारा ले एमएल यादव अजय कुमार यादव अमित अमीन गिरीश करण यादव युवान और ढाबेश यादव रहमानिया चौक भाटापारा ले मोहम्मद सलीम मोहम्मद नईम मोहम्मद ताहिर नवागढ़ कटई ले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा दामिनी वर्मा भाटापारा ले रमजान खान सिकंदर अशरफ खान अयाज खान अल्फैज खान बिल्हा ले शेख नासिर महजवीन बानो लच्छनपुर ले रामजी साहू जीवन लाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू आप मन हो कोस्टा पारा सरंगपाल ले रामचंद जी देवांगन घासी मामा युवराज सिंह सुनैना पिंकी गीता यश प्रियांश तन्वी नीता चंद्रवती भागवत पदुम और समस्त देवांगन परिवार बुरसुदा छत्तीसगढ़ ले भगवानी संतोषी चंद्रप्रकाश नेहा गजेंद्र और चिराग सेन और शीतला मंदिर वार्ड अहिवारा ले डबल कुमार धीवर जतिन हेमनराज बाबू धीवर संजय कुमार इंद्रजीत राजू लव कुमार लक्ष्य लक्षु आंचल माही बेबी नानू पार्थ अनमोल राजवीर और समस्त धीवर परिवार तो आवो सुने जाए आप मन के फरमाइश में कौशल कुमार भानु और उर्मिला देवंगन के गाए ये लोकगीत।

कार्यक्रम के अगले गीत ला सुने बर ईमेल पठाओ आप मन हरमो भोरम देवले जीवनलाल साहू राजबाई लोकनाथ वेदिका साहू कुठेना पांडुकाले कुमारी झामेश्वरी श्रीमती पुष्पलता भोला कीर्तिमान औझरना विपरियाले कमलकांत गुप्ता श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता समडेल नवापाराले मुकेश गुप्ता श्रीमती श्रद्धा आदिति राधे दीपक अंकुर राघव गुप्ता देवरी भाटापाराले के आर साहू आकाश कमलेश औ मुरली क्षत्रिय भोरमदेव कोडारले कन्हैया सोनी बिसे लाल पटेल सुखलाल पीला सिंह चरौदाबार नवापाराले नंद कुमार ठाकुर प्रमिला खुशबू ज्योति ठाकुर पलारीले प्रकाश वर्मा प्रिंस निखिल यशस्वी वर्मा गेंदा टोला बाजार चौकले वीरेंद्र कुमार गुप्ता गजेंद्र कुमार गुप्ता अंजलि और योगिता गुप्ता रानीगांव नगरी ले खिलेश कुमार साहू चित्ररेखा शुभम सेजल साहू गणेश धाम परसुली ले जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जयदास देवेश दास धनवंतिन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी औ लघान पंडरिया ले उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी साहेल औ भारती बघेल औ पोस्ट कार्ड भेजो आप मन भाटापारा ले बचकामल मोतीलाल यादव डॉक्टर बसंत भ्रगु विनय ठाकुर सोना डीहले सुब्रत चौधरी कोरदा ले कलीराम यादव छतराम यादव शेष राम यादव बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ले रोशनलाल देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता डिम्पल देवांगन भाटापारा दतरेंगी ले द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार दीपक कुमार झावेंद्र कुमार वर्मा डोंगरगांव ले राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बेबी अनिष्का उतन्मय गजभिये बेरला हतपान ले रतनलाल यादव शांतिबाई अजय कुमार यादव और भाटापारा ले दान सिंह रावत पद्मिनी रावत शुभम और सौरभ रावत तो आवो सुने जाए आप मन के फरमाइश में महादेव हिरवानी और साथी मन के गाए गीत

अगले गीत ला सुने बर ईमेल भेजो आप मन चांदनी चौक गंडई पंडरिया लिए पवन कुमार सेन प्रभा देवी लक्की विक्की नानू रविंद्र रौनक सेन रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा गंडई टिकरी पारा ले जागेश्वर देवांगन श्रीमती कचरीबाई दीपक कुमार श्रीमती जयश्री ऋषभ ऋचा देवांगन टेकापार वालोद ले चिंताराम यादव रवि प्रकाश यादव लोरमी चचेड़ी ले कमलकांत मरावी प्रमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी गंडई पंडरिया ले दरियाना मल मोटवानी अनीता राजेश मुकेश मोटवानी नेवई उतई ले विक्की देवांगन श्रीमती उर्वशी जतिन जयंत कुनिका दीपशिखा देवांगन दत्रेंजी ले भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता रुद्रवर्मा औ पीपरपारा पालचुआ मुंगेली ले उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता नितिन अवंशिका दिवाकर पोस्टकार्ड भेजो आप मन चूड़ी लाइन भट्टापारा ले अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम मोहम्मद साजिद छत्तीसगढ़ पलारी ले रसूल बेग कटरा तालाब रायपुर ले मोहनलाल देवांगन प्रभा देवी पहंदा कुरबा ले सम्मेलाल कुर्वे सावित्री देवी कुर्रे सरक बुंदिया ले गब्बर साहू निर्मला देवी साहू सिमगा ले लवकुश सेन प्रहलाद सेन आदित्य आशीष औ प्रकाश सेन बेमित्रा ले पूर्णिमा सारथी पूजा आरती भाव्या सारथी सुषमा सारथी अमलीपदर देवभोग ले निकुंज तिवारी लाची तिवारी ममता तिवारी सिहावा ले मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु औ अंकित देवांगन धवलपुर ले धनंजय मिश्रा अर्चना प्रतीक्षा चंद्रकांति गेंदलाल मिश्रा कुल्हाड़ी कोट पांडुका ले नरोत्तम कश्यप नीतू कश्यप मोहनीश कश्यप औ अनुराग कश्यप औ मोहाली छत्तीसगढ़ ले मोहाली चंडीगढ़ ले टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप अनिल शर्मा शुभचंद्र बजाज बिट्टा साहिल बजाज त आवाओ सुने जाए आप सब मन के फरमाइश में विदुषी ममता चंद्राकर औ कुलेश्वर ताम्रकार के गाए ए लोकगीत।

कार्यक्रम की आखिरी गीत ला सुने बार ईमेल मिले हैं आप सब मन के खोंदला उदयपुर सरगुजाले जीवधन सिंह पैकरा धुरनी करिश्मा कलेश्वर सिंह बागबहारा भदरसीले पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन कमरिया बिलासपुरले साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सिवनी खुर्द ले मनशा राम पटेल बुधियाबाई भानु प्रताप कुमारी पायल पटेल बागामुड़ा कुमा खान ले प्रज्ञानंद देवांगन नंदिनी प्रकाश गायत्री यशवर्धन यशस्वी मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू योगेश राहुल साहू अड़ार नाथघाट ले भूपेश वर्मा दीपेश वर्मा बाजार पारा बेमेत्रा ले भरतलाल सिन्हा लव कुमार लक्की सिन्हा बिलाईगढ़ ले जगदीश देवांगन पुष्पांजलि जया जानवी तृप्तेश देवांगन चरडोंगरी पिपरिया ले दुर्गा राम साहू अजय कुमार कुमारी इंद्राणी माया जयकिशन योगेश वासु हेमा राधिका साहू डोंडी लोहारा ले देवशंकर तामुरिया अजय देव तुषार देव डॉली बेबी पूजा राधिका प्रभा देवी अल कबीर भूतकछार लोरमी ले दुर्गेश मरकाम निर्मला दीपक प्रीतम धनराज मरकाम और सांकरा सोमनी ले नारायण लाल यदु कुलवंतिन देवी देवेंद्र प्रताप नेहा देवी मिलिंद्र कुमार प्रणय और रुद्रांश प्रताप पाती मेले आप सबके सिमगा छत्तीसगढ़ ले श्रीमती सविता जैन प्रदीप जैन शिक्षक नगर दुर्गले राकेश वर्मा सचिन वर्मा वाणी वर्मा शीतला नगर दुर्गले शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर रामनगर रायपुर ले राजेश अंबादे शशिकला अंबादे भिलाई जामुन ले विकास वर्मा खुशी वर्मा ग्रंथ संजय प्रधान पूजा प्रधान कोटा रायपुर ले योगिता वर्मा रुचि खुशी ओजल वर्मा औ भाटापारा ले श्रीमती अमृता यादव पार्वती श्रीमती ईश्वरी लक्ष्मी औ प्रेरणा जिम्पी यादव ता आओ सुने जाए आप सबके फरमाइश मा कार्यक्रम के आखिरी गीत मनी राम साहू औ अखिलेश साहू के स्वर्मा।

तसंगी हो यही गीत के संग एक कार्यक्रम में ही सिरावत है। आज के कार्यक्रम में गीत ला जोरे रहिन बीरभान साहू मनहा त अब देवो विदा अपन संगवारी प्रवीणा त्रिपाठीला राम राम।

0: कार्यक्रम आप मन के गीत अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। एक बजने वाले हैं अब समाचार, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल

0: 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की संगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मैटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। जानकारी का विषय है सोयाबीन की खेती।
2: किसान भाइयों, पिछले कुछ वर्षों में सोयाबीन की उत्पादकता हमारे देश में 1 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास ही है, जबकि विश्व के अन्य उत्पादक देशों में 2 से 2.5 टन प्रति हेक्टेयर है। देश के कृषि विश्वविद्यालय और सोयाबीन अनुसंधान केंद्रों ने उन्नत कृषि की तकनीक सुझाई है और अनेक उन्नत जातियों का प्रजनन किया है, जिससे उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सोयाबीन की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली मध्यम से गहरी काली मिट्टी उपयुक्त होती है। खेत में ढाल इस प्रकार हो कि जल का निकास अच्छी तरह से हो जाए। खेत की मिट्टी अति अम्लीय या क्षारीय नहीं होना चाहिए। ग्रीष्मकाल में अप्रैल या मई में खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए। गर्मी की धूप और तापक्रम से कीट बीमारी और कई प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। वर्षा प्रारंभ होने पर 2 या 3 बार बखर तथा पाटा चलाकर खेत को तैयार किया जा सकता है। किसान भाई, यदि सोयाबीन की किस्मों की बात करें तो किस्मों का चयन कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार किया जाना चाहिए। हल्की भूमि व वर्षा आधारित क्षेत्र में जहां औसत वर्षा 600 से 750 मिलीमीटर है, वहां जल्दी पकने वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। मध्यम किस्म की दोमट भूमि जहां पे 750 से 1000 मिलीमीटर औसत वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में मध्यम अवधि में पकने वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। ऐसी किस्में जो 100 से 105 दिन में आ जाती हैं, ऐसे क्षेत्र में लगाना चाहिए। 1250 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले तथा भारी भूमि में देर से पकने वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बीज की अंकुरण क्षमता 70% से अधिक हो और खेत में अच्छी फसल हेतु पौधों की संख्या 40 पौधा प्रति वर्ग मीटर प्राप्त हो सके। अतः उपयुक्त किस्म के प्रमाणित बीज का ही चयन करना चाहिए। किसान भाई, सोयाबीन की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें JS 9560, JS 9305, JS 71-5, JS 335, NRC 12, NRC 37 या Ahilya 4, Bhusa 16 आदि बहुत सारी किस्में हैं। किसान भाई, विभिन्न जातियों के बीज के आकार के अनुसार सामान्य अंकुरण क्षमता वाले बीज की दर किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि छोटे दाने वाली किस्म 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मध्यम दाने वाली किस्म में 75 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और बड़े दाने वाली किस्मों में 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का उपयोग करना चाहिए। किसान भाई, बुनी की समय की बात करें तो बुआई का उचित समय 20 जून से जुलाई का प्रथम सप्ताह अच्छा होता है। जब लगभग 3 से 4 इंच वर्षा हो चुकी हो तो इसकी बुआई शुरू कर देनी चाहिए। यदि देर से बुआई करनी पड़े तो बीज की मात्रा सवाई और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। देर से बुआई की स्थिति में शीघ्र पकने वाली जातियों का प्रयोग

0: करना चाहिए। किसान भाई, बोने की विधि की बात करें तो सोयाबीन की बोनी कतारों में करनी चाहिए, बीज की 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी पर और 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। बोने के लिए 2 पोर वाली नारी या दुफन अथवा पेट्रा ड्रिल का उपयोग करना चाहिए, जिसमें खाद और बीज की बोनी अलग अलग की जा सके और खाद नीचे और बीज ऊपर गिरे। बीज व उर्वरक कभी भी एक बोनी में एक साथ उपयोग नहीं करना चाहिए। सोयाबीन बीज को बोने के पहले संपूर्ण बीजोपचारक कार्बोक्सिन और थायरम से उपचारित करना जरूरी है। यह दवा बाजार में तरल रूप से में मिलती है। बीज को फफूंद नाशक दवा से उपचारित करने के बाद बुआई से ठीक पहले प्रत्येक किलो बीज को 5 ग्राम राइजोबियम कल्चर तथा 5 ग्राम पीएसबी कल्चर से भी उपचारित करना चाहिए। कल्चर से उपचारित करने के बाद तुरंत बुआई करना चाहिए। फफूंद नाशक और कल्चर को एक साथ मिलाकर कभी उपयोग में नहीं लाना चाहिए। किसान भाई, खाद उर्वरक की बात करें तो अच्छी पकी हुई गोबर की खाद लगभग 4 से 6 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में फैला देना चाहिए और पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। बोते समय 20 किलो नत्रजन, 60 से 80 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटाश, 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर पोषक तत्वों की मात्रा कम या ज़्यादा की जा सकती है। उर्वरकों को 20 से 2.5 से 3 सेंटीमीटर नीचे देना चाहिए। जस्ते की कमी वाले क्षेत्रों में 25 किलो जिंक सल्फेट भी मिला देना चाहिए। किसान भाई, सोयाबीन फसल में लगने वाले कीटों के कारण उपज में 30 से 50% तक की कमी आ सकती है, अतः कीटों का उचित समय पर प्रबंधन कर लेना चाहिए।
1: कार्यक्रम खेती की बात में अभी आप सुन रहे थे सोयाबीन की खेती, इस विषय पर जानकारी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:10 और 30 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन।

कार्यक्रम सुन रही सभी बहनों को अनीता का नमस्कार। बहनों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जो सीधे सीधे मानवता सेवा और जीवन दान से जुड़ा है। 14 जून को पूरे विश्व में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वैच्छिक रक्तदाताओं को समर्पित है बहनों, जो निस्वार्थ भाव से रक्तदान करके अनगिनत लोगों को नया जीवन प्रदान करते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना और सुरक्षित स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना है। बहनों, रक्तदान केवल एक चिकित्सा आवश्यकता नहीं बल्कि संवेदनशील समाज की पहचान भी है। जब हम किसी अनजान व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए आगे आते हैं, तब मानवता का सबसे सुंदर स्वरूप सामने आता है। इन्हीं भावनाओं को समर्पित कुछ पंक्तियां हैं बहनों। रक्त की हर बूंद में जीवन का संदेश, दान करो और बांट दो मानवता का परिवेश। रक्तदान है महादान, जीवन है वरदान, इसके द्वारा बच सके किसी का अनमोल प्राण। तो बहनों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम बात करें गीत सुने, जिसकी रिकॉर्डिंग हमने शनिवार को की है। आइए सुनते हैं क्या है।

0: हाँ जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: जी, मैं सीमा तिवारी अंबिकापुर से बोल रही हूँ,
0: हाँ,
1: सरगुजा से।
0: जी सीमा जी, बहुत
1: जी,
0: बहुत
1: और मैं आपका कार्यक्रम आप लोग का हमेशा ही लगभग सुनती हूँ। मुझे
0: जी।
1: बहुत पसंद आता है रेडियो कार्यक्रम, और बहुत सी बातें, ज्ञानवर्धक बातें हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलती हैं, सुनने को मिलते हैं हमें। जी
0: तो देखिए, अभी अगर हम बात करें तो रक्त

0: रक्तदान जो बोला जाता है, महादान कहा जाता है, और अभी रक्तदाता जागरूकता दिवस हम मना रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में यदि आप कुछ बताना चाहें कि लोग इसके प्रति कितने जागरूक हुए हैं।
1: जी दीदी, मैं इसके बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि पहले की अपेक्षा लोग इसको लेकर, रक्तदान को लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं। लोगों में इसके प्रति बहुत जागरूकता आई है, और जैसा कि कुछ लोगों का नाम भी, सत्यपारा से एक तिवारी जी हैं, उनका नाम अभी ध्यान से नहीं आ रहा है, वो भी हमेशा देते रहते हैं, और मेरे संपर्क में और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा नियमित रूप से हर 2 महीने 6 महीने में डोनेट करते हैं ब्लड। और इसको कुछ लोग तो इसको धर्म का के दृष्टि से भी देखते हैं कि एक बहुत पुण्य काम होता है, कि रक्तदान मतलब महादान।
0: हाँ हाँ जी
1: जी, तो इसको इस रूप में भी लोग देखते हैं, और एक बहुत ही अच्छा और नेक कार्य होगा अगर हमारी वजह से किसी को जीवन मिल जाता है या किसी को कुछ भला हो जाता है।
0: जी,
1: तो इससे बड़ा और अच्छा काम क्या ही हो सकता है।
0: जी,
1: इसलिए जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे भी समझ में आता है कि ये रक्तदान जो है बहुत ही नेक और पुण्य काम है, इसको करना चाहिए। और लोगों में इसके प्रति जो कुछ धारणाएं बनी रहती है कि कमजोरी हो जाएगा, ऐसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ दिनों के बाद वो तुरंत ही ब्लड बन जाता है फिर से।
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, ब्लड किसी को यदि हम रक्त दान करते हैं, है ना, तो ये तो महादान तो है ही है, और धारणा बिल्कुल गलत है। कुछ दिनों तक यदि हम कुछ पौष्टिक भोजन ले लेते हैं, है ना, तो वो फिर से रक्त निर्माण हो। जी चलिए, बस अपनी पसंद का गीत बता दीजिए।
1: जी, अखियों के झरो।
0: जी हाँ, चलिए गीत हम सुनवाएंगे सीमा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका
1: जी धन्यवाद दीदी, आपको भी।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हेलो
4: हेलो,
3: हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
4: आकाशवाणी।
3: हाँ बिल्कुल, आपने सही जगह फोन किया है।
4: प्रणाम।
3: हाँ नमस्ते।

0: आपको नाम बताइए अपना।
1: मैं ग्राम पंचायत मंजीरा से बोल रही हूँ, शिव कुमारी तिवारी।
0: अच्छा जी, शिव कुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आज क्या कहना चाहती हैं बहनों को आप? अभी क्या चल रहा है ये बताइए आपके यहाँ?
1: अभी मौसम का बदलाव चल रहा है, धूप भी है और हवा तूफान भी है,
0: जी जी
1: थोड़ा
0: जी
1: थोड़ा बारिश भी है।
0: तो ऐसे समय में बताइए किस तरह हम अपना और अपनों का ख्याल रखें।
1: हाँ, अब अपना और अपनों का ख्याल रखने का बहुत महत्वपूर्ण मौसम है। कभी कभी मतलब बरसात आ जाता है और धूप भी, तो इसके वजह से बच्चे लोग का या तो बुजुर्ग लोग का या खुद का शरीर स्वास्थ्य में गड़बड़ हो जाता है, उसका ध्यान रखना है।
0: जी,
1: और अभी बहुत तो हो रहा है, गर्मी हो रहा है, जमीन में तो कुछ मान लीजिए सर्प हो गया या बिच्छू हो गया, ये भी निकलना शुरू हो गया है, तो
0: जी
1: इससे भी बचाओ,
0: जरूरी है।
1: ध्यान से मतलब शाम को रात को लाइट जला के सोएं और बच्चे लोग का विशेष ध्यान रखें, दिन
0: हाँ
1: में
0: हाँ जी
1: जैसे बाहर खेल रहे हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ है, अभी कुछ काट न ले, इस टाइप का।
0: हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए ये मौसम जो है ना, तापमान बदलता रहता है, कभी
1: जी,
0: तापमान
1: तापमान
0: उच्च होता है, कभी
1: बदलता
0: निम्न।
1: रहता है।
0: जी, इसलिए ना स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस समय जो
1: जी
0: हवा में है ना, बहुत सारे जो वायरस हैं वो
1: जी
0: निकल जन्म लेते हैं इस समय, निकलते हैं, है ना। तो उससे बचाव बहुत ज़रूरी है, तो हमें
1: बहुत
0: अपने
1: जरूरी है।
0: हाँ खान पान का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, है ना। चलिए, बहुत अच्छी
1: मैं
0: बातचीत आपसे। कौन सा गीत सुनेंगी? हाँ,
1: नदिया का पार का सुना दीजिएगा, कोई भी गाना, पुराना
0: अच्छा
1: ही वही तो भी
0: अच्छा
1: है।
0: अच्छा अच्छा चलिए, गीत हम आपकी पसंद का सुनवाएंगे। फ़ोन के लिए
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी धन्यवाद आपको।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी बताइए।
1: हाँ, गाना सुनना था।
0: हाँ बिल्कुल, गाना हम सुनवाएंगे। पहले परिचय बता दीजिए अपना, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मतलब मैं तो यही सिलफिली, आपका सिलफिली से बोल रही हूँ, अंबिकापुर सिलफिली गांव, जानते हैं ना।
0: हाँ हाँ जी बिल्कुल, नाम बताइए
1: हाँ,
0: अपना।
1: रूबी भवाल बोल रही हूँ।
0: अच्छा, आप पहली बार फोन कर रही हैं कार्यक्रम में?
1: मैंने एक बार और लगाई थी
0: अच्छा, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका रूबी जी, है ना?
1: जी।
0: हाँ जी, चलिए गाना बता दीजिए पहले।
1: हाँ, गाना गाना बता। ये गाना याद तो बहुत सारा आया है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है।
0: अच्छा,
1: तो आप कौन मैडम बोल रही हैं?
0: मैं अनीता मैडम बोल रही हूँ, अनीता
1: अच्छा, आपसे
0: मंदिरवार।
1: पहली बार बात हो रहा है।
0: हाँ हाँ जी।
1: आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन ये वाला। तो
0: वाह, बहुत सुंदर आवाज है आपकी तो।
1: गाना का तो बहुत शौक है मैडम, लेकिन ना मैं अभी थोड़ा एजेड हो गई हूँ, तो गुनगुना लेती हूँ, लेकिन अपना ही रेडियो सुन के, अपना सारा दिन तो रेडियो ही सुनती हूँ। ये
0: तो
1: आपका कल क्या हुआ? कल मैं 3:30 बजे से मतलब लगाने वाली थी मोबाइल में, वो जो हेलो फ्रेंड नहीं होता है,
0: जी
1: तो मैडम मेरा रिंग गया, मेरा रिंग को कोई नहीं उठाया, तो मन में दुख हो गया। तो मैं बोले, अरे फोन में रिंग जाता है, तो गाना ही तो सुनना था।
0: अच्छा, चलिए
1: तो
0: आपका आपकी इच्छा पूरी हो गई है, और बिल्कुल आपकी पसंद का गीत तो हम सुनवाएंगे ही, आपसे बातें
1: हाँ,
0: हो
1: कल
0: रही
1: से 1 बजे
0: हैं।
1: मैं आपका गाना सुनूंगी।
0: हाँ हाँ जी, तो ये बताइए रूबी
1: हाँ
0: जी, क्या करती हैं आप?
1: मैडम जी, मैं क्या करती मालूम?
0: हाँ
1: मेरा यही अपना घर का काम करती हूँ, और यही फूल पौधा में अपना व्यस्त रहती हूँ। बस
0: जी,
1: अपना घर में गार्डन है, जानते हैं मैडम, पक्षियों के लिए तो मेरा फूल का शहद खा के उनका पेट भर जाता है, और ये पूरा इसके बाद में उसी में लोग झूलते रहते हैं। मैं मोबाइल में लोगों का फोटो कैद कर लेती हूँ, छोटे छोटे नन्हे नन्हे चिड़िया नहीं
0: जी
1: होते हैं।
0: आप मतलब बहुत प्रकृति प्रेमी हैं, है ना?
1: हाँ, और इसके
0: जी
1: बाद में मैं फल पौधा उल्धा भी सब लगाई हूँ, और ये फूल तो मेरा फेवरेट है, एकदम सब समय मेरा फूल खिले ही रहते हैं, है
0: जी बहुत
1: ना।
0: सुंदर, और बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि देखिए पेड़ पौधे तो हमारे लिए एक तरह से जीवन ही हैं, जीवनदाता
1: जानते हैं
0: हैं, है
1: मैडम,
0: ना?
1: शाम के समय ना आप बरंदा में बैठेंगे ना,

0: और रजनीगंधा सुबह खुशबू नहीं मारता, शाम जैसे जैसे होगा ना उसका खुशबू ऐसे लगता है कि वातावरण एकदम सुगंधित
1: हो जाता है। सही बात है। चलिए आपका गार्डन अच्छा तो देखने के लिए आना पड़ेगा, है ना?
0: एक दिन आप आइए मैडम, आप
1: चलिए
0: तो मैं मोबाइल में फूल फोटो खींच के रखी हूँ, वो भी देखिएगा, अपना गार्डन भी देखिएगा।
1: जी जी जी चलिए।
0: अभी गर्मी में ना ये आपका जनवरी फरवरी में तो इतना फूल खिलता है, एकदम लेटेस्ट गुलाब का फूल खिलता है। अभी गर्मी में थोड़ा मैंने कुछ फूल मैंने कम हो गया है, लेकिन जैसे जैसे ठंडी आता है वैसे वैसे फूल मैंने क्वालिटी वाला खिलते रहता है।
1: चलिए बहुत अच्छी बातचीत, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे।
0: धन्यवाद आपको आप रिसीव किए।
1: जी जी चलिए इसी तरह जुड़े रहिए कार्यक्रम से।
0: जी मैं जुड़े रहूंगी हर दम।
1: जी जी जी चलिए धन्यवाद।
0: नमस्ते।

बनो, अभी आप सुन रही थी फोन इन कार्यक्रम बात करें गीत सुने। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं बहनों। इसके लिए फ़ोन नंबर है 231-917, 231-918। इसके पहले कोड लगाना है 07774। और इसकी रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक शनिवार को प्रातः 10:30 से 11 बजे के बीच। तो बहनों आपके फ़ोन कॉल्स की प्रतीक्षा रहेगी। तो बहनों चलते चलते कुछ पंक्तियाँ। जीवन की ज्योति जलाने को आओ हम सब साथ हाथ बढ़ाएं, अपने रक्त की कुछ बूंदों से किसी की सांसों को बचाएं। नहीं है इससे बड़ा उपकार, नहीं कोई इससे दान महान, मानवता का सच्चा संदेश है, रक्तदान है महादान। आज के कार्यक्रम से दीजिए विदा, आप सभी को अनीता का नमस्कार।

अभी महिलाओं के लिए घर आंगन कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोता साथियों के ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को कल्पना सिन्हा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, शुरू करते हैं आप सभी की पसंद पढ़ने का सिलसिला। ईमेल भेजने वाले हमारे साथी हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति कुमार, डीकेच साहू रसेड़ा छत्तीसगढ़ से हैं। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, ग्राम दवनसरा पोस्ट दौना जिला सूरतपुर से कपिल राज देवांगन दखल, कल्लू भाई झांगुड़ लाल, ब्रिजेंद्र चक्रवर्ती, उदेश्वर देवांगन और दिलभरन नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हमारे साथी हैं अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती और अभय गुजराती, इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया और नमन ढींगिया, वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, रिशु अक्षय कुमार, अभिषेक नायडू, धनोरा बस्टर से हमारी ये साथी हैं, महाराष्ट्र मोताला से हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, राजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन ग्राम सोंगा मगरलोट से हैं, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और छोटी छाबड़ा, शाहूनगर यवतमा

कमाल सी, राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से ईमेल भेजा है, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। श्रोताओं, आप सभी के ईमेल पर हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में फिल्म हिना का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम ईमेल की गुंजा आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें, हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को सुरक्षित रक्त की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना और स्वैच्छिक रक्तदाताओं के निस्वार्थ योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देना है। और इसी के बाद बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। हम आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 का गीत। इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है हमारे इन साथियों ने, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन और कौशल्या देवांगन, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, पुष्पांजलि नायडू, प्रीतम, चैतन्य, दुर्गेश, अमृता, संतोष हमारे ये साथी हैं बस्तर से, साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार खमरिया बिलासपुर से, दिल्ली से स्वीटी और प्रतिभा, मजनू कटिला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और उनके पूरे परिवार के सदस्य, जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी, सेक्टर 4 कमल विहार रायपुर से कौशल गोस्वामी और रिंकी गोस्वामी, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार से मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर कौसर, मोहम्मद याकीब पवार, अलमास मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराड़ी और माफिया अरहान और उनके साथी, बुलढाणा वर्षिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा मानकर और दीपाली मानकर और श्लोक, ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र दांगी, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, नीतेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, लखनलाल देवांगन पलारी छत्तीसगढ़ से हैं। तो आइए सुनते हैं श्रोताओं, आप सभी के ईमेल पर फिल्म पुष्पा द राइज का ये गीत जिसमें आवाज़ है सुनिधि चौहान की।

श्रोताओं, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म जबरदस्त का ये जबरदस्त गीत। शब्द मजरूर सुल्तानपुरी के हैं और संगीत आरडी बर्मन का है। सुनना चाहते हैं। प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव, छत्रपति संभाजीनगर सूर्यवाड़ी से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, सोहम प्रांजलि बोरगांवकर, अंशुमन ओवी सदानंद, सुभाष नीरज विराज, योगिता सुवर्णा बोरगांवकर, एयरपोर्ट रोड छत्रपति संभाजीनगर से प्राजक्ता दत्त प्रसाद और उनके साथी। पश्चिम बंगाल रानीगंज से रेहान शर्मा और करणदीप शर्मा, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अफजल, नफीसा प्रवीण, जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी राघव, कुमार भानुप्रिया, मेघा राशि, ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, सुखराम सिंह मरावी, सुहानी सिंह, बिमला सिंह, ग्राम पंचायत कौशलपुर भैंसामुड़ा, रामानुज नगर, श्रीनगर, जिला सूरतपुर छत्तीसगढ़ से। आइए सुनते हैं आपकी पसंद।

और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, भूपेंद्र सिंह और सुरेश वाडकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है मासूम, शब्द गुलजार के हैं और संगीत आरडी बर्मन का है। इस गीत के लिए ईमेल मेरा है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा स्वीटी दीवाना, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा, और दतरंगी से हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोकेलाल वर्मा। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती

दीपा और रिमझिम गुप्ता, उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, कमला नानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, अनारकली बाजार जगराओं से, सेक्टर 5 सूर्यनगरी, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और मुन्ना हिमाक्ष, जी के परमार गांधीनगर गुजरात से हैं, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, निधि निखिल वर्मा, ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, और सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा।

फिल्म माचिस का ये बहुत ही प्यारा सा गीत, आवाजें हैं हरिहरन, सुरेश वाडकर और विनोद राठौड़ की। और इस गीत के लिए ईमेल भेजा है हमारे इन साथियों ने, ग्राम पहारा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बंछोर, अंजलि जैन मेरठ से हैं, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, अकोला से सुयश रॉय, अलका रॉय, दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद, आपकी नज़र।

0: फिल्म माचिस के संगीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल की गुंजब समाप्त होता है आज के लिए। इसे आपके लिए प्रस्तुत किया कल्पना सेना ने। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ

को तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग।
श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भारत

0: नाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोपहर समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में ये गीत। शब्द अजय झिंगरन के हैं और संगीत रवि पंवार का है।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: इस संदेश के बाद आइए अब सुनते हैं हरिहरन की आवाज में मुनीर जुंझानवी का गीत। संगीत निर्देशन हरिहरन का है। बोल हैं, जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, कुछ खास दोस्तों के भी चेहरे उतर गए।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: तुझसे मिलने की तमन्ना आज भी बाकी है, दिल की हर धड़कन में तेरी ही झांकी है। कार्यक्रम की अगली गजल आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में।
3: ओ प्रिया, जब जब तू मेरे सामने आती है मेरे दिल में

एक अजीब सी हलचल होने लगती है। तू मेरा प्यार, मेरी पूजा, मेरी जिंदगी है। आ देख, देख तू मेरा पागलपन, कि मैं हर चेहरे में तेरा चेहरा तलाश करता हूँ। ये मुझे क्या हो गया है, क्या कहूँ, बस तुझे छूने को दिल करे, तुझे पाने को दिल करे।

0: से ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

चांद भी तेरे हुस्न के आगे फीका सा नजर आए, फूल भी तेरी खुशबू से अपना रंग भूल जाए। जब भी तेरी याद दिल के आंगन में उतरती है, हर सूना पल भी खुशी का मौसम बन जाए। आइए सुनते हैं पंकज उदास की गाई ये गजल। शब्द रचना मुमताज राशिद की है और संगीत निर्देशन पंकज उदास का है।

फाल्गुनी पाठक के गाए इस गीत के साथ ही गीत गंधा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको जानकारी दे रहे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। 5:05 पर भजन संध्या का प्रसारण होगा। युवा श्रोताओं की युवाणी शाम 5:30 बजे। इसमें आज के आकर्षण होंगे युवा सोच और युवा पसंद, जिले की चिट्ठी। शाम 6:05 पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम गोदुली में। शाम 6:20 पर हम आपको सुनवाएंगे साधारण दास और साथियों के गाए देवी भजन और घसिया लकड़ा और साथियों के गाए सादरी लोकगीत। शाम 6:30 पर चित्रपट संगीत आप सुनेंगे। ग्रामीण श्रोताओं के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:20 पर। इसमें सामयिक चर्चा में सुनिएगा पर्यावरण संरक्षण हम सबका दायित्व। इस विषय पर चर्चा के अलावा किसान समाचार में कृषि संबंधी सामयिक खबरें और लोकगीत मौसम मंडी भाव की जानकारी आप सुनेंगे। रात 8 बजे सुनिएगा सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। रात 9:15 पर चित्रपट संगीत सुनेंगे आप। और रात 9:30 श्रोता साथियों के ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज पेश करेंगे आज रात 9:30। रात 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसमें आज आप सुनेंगे जे एस श्रीराम का कर्नाटक वोकल गायन। श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। इसमें दोपहर के 3:03 और 25 सेकंड हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। इस दौरान एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।

मीडिया में वो 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्स और FM 100.2 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5 बजने वाले हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा यहीं से आरंभ होती है। सभा की शुरुआत करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के साथ। तो लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: ही बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की

0: संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा, खड़गवा, रामेश्वरपुर, जाम दोहर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये सकालो, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, किशुनपुर, जमीरा, डांडपारा, दांतीढाब, घटगांव, बरवाली, कंडराजा, बरिमा, पेंट, घोड़ा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा, साजापानी, कुदरा झरिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, सिंघीछा, बेहरामार, इंचपारा, कंचीरा, कोयलार, सागरपुर, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा और करतला में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये चचिया, बैगामार, तौलीपाली, गेराव, बताती, कोरकोमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलारगढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमाटिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 61 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राठरोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तालदादर, हरदी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गीतों गज़लों का कार्यक्रम, माफ़ कीजिएगा, गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम, भजन संध्या।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज में ये भक्ति गीत।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों के कार्यक्रम भजन संध्या का। कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर का गाया फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये भक्ति गीत। रचना है नरेंद्र शर्मा की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों से फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये भक्ति गीत। रचना थी नरेंद्र शर्मा की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या का। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अवतार फिल्म का ये भक्ति गीत। आवाजें हैं महेंद्र कपूर, नरेंद्र चंचल, आशा भोसले और साथियों की। रचना है आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर, नरेंद्र चंचल, आशा भोसले और साथियों से फिल्म अवतार का ये भक्ति गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम भजन संध्या का आप आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं खूली फिल्म की ये कव्वाली। आवाज़ है शबीर कुमार की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

श्रोताओं, इसी के साथ आज गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5:30 होने को हैं। लीजिए सुनिए युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवा वाणी।

नमस्कार दोस्तों, आज की युवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियम और आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा दान वो दान होता है जो किसी की ज़िंदगी बचा सके। धन का दान, वस्त्र का दान और अन्न का दान,

तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन एक ऐसा दान भी है जो सीधे किसी की सांसों को नया जीवन दे सकता है, वो है रक्तदान। दोस्तों, आज के युवा सोच में हम बात करेंगे रक्तदान महादान की, जानेंगे कि रक्तदान क्यों ज़रूरी है, इससे जुड़े भ्रम क्या हैं और किस तरह हमारा एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में नई उम्मीद जगा सकता है। कल्पना कीजिए, किसी अस्पताल में एक मरीज जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, मशीन चल रही है, लेकिन मरीज को तत्काल रक्त की आवश्यकता है। ऐसे समय में कोई अजनबी व्यक्ति आगे बढ़कर रक्तदान करता है और उसी रक्त की कुछ बूंदें किसी व्यक्ति का जीवन बचा लेती है। यही रक्तदान की सबसे बड़ी शक्ति है। रक्त का कोई नकली विकल्प आज तक नहीं बन पाया है। इसे ना किसी फैक्ट्री में बनाया जा सकता है और ना ही किसी प्रयोगशाला में। इसकी पूर्ति केवल और केवल मानव शरीर से ही हो सकती है। हर दिन दुर्घटना, ऑपरेशन, प्रसव, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हजारों मरीज को रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे में रक्तदान उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं होते। दोस्तों, रक्तदान को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है। कुछ लोगों को डर होता है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित होता है। विशेषज्ञों के अनुसार रक्तदान के बाद शरीर कुछ ही समय में रक्त की कमी को पूरा कर लेता है। रक्तदान से पहले दाता की स्वास्थ्य जांच भी की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह रक्तदान के लिए पूरी तरह योग्य है। इसलिए डर और भ्रम को छोड़कर सही जानकारी अपनाना बहुत जरूरी है। याद रखिए, ज्ञान डर को दूर करता है और जागरूकता समाज को मजबूत बनाती है। भारत युवा शक्ति का देश है। देश की बड़ी आबादी युवाओं की है और यही युवा रक्तदान अभियान को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, रक्तदान केवल ज़रूरतमंदों के लिए ही नहीं बल्कि दाताओं के लिए भी लाभकारी माना जाता है। रक्तदान के दौरान स्वास्थ्य की प्राथमिक जांच होती है, जिससे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है। इसके अलावा रक्तदान करने से आत्मसंतोष और सामाजिक जिम्मेदारियों का भाव बढ़ता है। सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप किसी अनजान व्यक्ति के जीवन में उम्मीद की किरण बनते हैं। सोचिए, अगर आपके एक यूनिट रक्त से किसी माँ की गोद उजड़ने से बच जाए, किसी बच्चे को उसका पिता मिल जाए या किसी परिवार की मुस्कान लौट आए, तो इससे बड़ा सुख और क्या ही हो सकता है। दोस्तों, रक्तदान केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं बल्कि मानवता की भी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति में से एक है। ये ऐसा दान है जो किसी के जीवन को नया अवसर देता है, किसी परिवार को नई उम्मीद देता है और समाज में करुणा और सहयोग की भावना को मजबूत बनाता है। याद रखिए, रक्तदान महादान है क्योंकि ये किसी को जीवन दान देता है। इसी संदेश के साथ आज की युवा सोच बस यहीं तक। अब आइए सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म काइट से, जिसमें आवाज़ है के की, गीतकार हैं नसीर फराज और संगीत से सजा है राजेश रोशन ने।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: चलते हैं दोस्तों हमारे संडे स्पेशल क्रम युवा पसंद में।

स्वागत है दोस्तों आपका क्रम युवा पसंद में। आप सुन रहे हैं एक बेहद खूबसूरत संगीत यात्रा और आज का हमारा थीम है चूड़ियाँ। दोस्तों चूड़ियाँ जो सिर्फ हाथों की सजावट नहीं बल्कि भारतीय नारी के सिंगार भावनाओं और अनगिनत यादों का खूबसूरत हिस्सा है। इनकी खनक में कभी प्यार झलकता है, कभी शरारत तो कभी दिल के अनकहे एहसास। तो आइए चूड़ियों की इस मीठी खनक के साथ सुनते हैं एक से बढ़कर एक शानदार गीत। सबसे पहले सुनते हैं कभी खुशी कभी गम का बेहद लोकप्रिय गीत, जिसमें आवाज़ें हैं अमित कुमार, सोनू निगम, अलका, उदित, कविता कृष्णमूर्ति की, गीतकार हैं

हैं समीर और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, प्रियंका, पूजा, लिल्लू, रितु, ऋषभ सिंह ने।

पायल की छनछन हो या चूड़ियों की खनक, इनकी मीठी आवाज़ हर पल को खास बना देती है। इन सुरों में छुपी है नज़ाकत, अदा और ढेर सारी शौकियाँ। तो आइए सुनते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में ये प्यारी सी गीत, जिसके गीतकार और संगीतकार हैं जतिन ललित, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा ने।

सिंगार कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी असली चमक तब आती है जब उसमें प्यार का रंग घुल जाए, क्योंकि अपने किसी खास के बिना हर सजावट अधूरी लगती है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सनम बेवफा का ये गीत। गीतकार हैं सावन कुमार और संगीत से सजाया है किशोर मनीष ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा पूजा, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी ने।

कुछ चूड़ियाँ सिर्फ कांच की नहीं होती, उनमें यादें, एहसास और किसी अपने की धड़कने बसी होती हैं। ऐसी ही भावनाओं से सजा है ये गीत, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म गैम्बलर का। गीतकार हैं नीरज और संगीत से सजाया है SD वर्मन ने और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने।

दोस्तों, अगर आप भी हमसे अपने पसंद के गीतों की फरमाइश करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर पत्र भेज सकते हैं। हमारा पता है क्रम युवा पसंद युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन कोड 497001। या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है युवा पसंद AIR@gmail.com। दोस्तों, इसी के साथ क्रम युवा पसंद बस यहीं तक।

0: दोस्तों वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का आज की यूवाणी से, तो इजाजत दीजिए मुझे यानी आपकी दोस्त प्रियम को। नमस्कार।
1: युवा श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण मीडियम वेव और FM बैंड पर, ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं 6 बजने वाले हैं, हिंदी समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो

0: समावेशी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 125,000 से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डेओक को हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा। वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार।
3: केंद्र है 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। जिले की चिट्ठी में सुनिए गरियाबंद जिले की चिट्ठी। आलेख है फरहाज मेमन का।
4: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं गरियाबंद जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 9 जून को मंत्रालय में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों और दलहन तिलहन मक्का कोदो कुटकी रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रूपये की आदान सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। श्रोताओं, प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद मंगलवार 16 जून से खुल जाएंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालकों को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में विभाग ने सभी

0: स्कूलों को पहले ही दिन से समय सारणी के अनुसार अध्ययन अध्यापन कार्य शुरू करने को कहा है। इस बीच सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा। वहीं बोर्ड और स्थानीय परीक्षाओं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। श्रोताओं, गरियाबंद जिले में भी 9 जून से सीएम हेल्पलाइन सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के तहत अब नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 पर अपनी शिकायतें दर्ज कराने के साथ ही सुझाव भी दे सकेंगे। इसके अलावा शासन की योजनाओं और सेवाओं के संबंध में फीडबैक साझा कर सकेंगे। इस हेल्पलाइन सेवा को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है। इसमें राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8000 अधिकारी जुड़े हुए हैं। वहीं 1195 श्रेणियों में निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। श्रोताओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग और फिंगेश्वर विकासखंड में 22 जून से रेस रत्नगर्भा अकादमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत की जा रही है। इस अकादमी के माध्यम से विद्यार्थियों को एसएससी, सीजी व्यापम, रेलवे, अग्निवीर सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित आधुनिक शिक्षण प्रणाली से कराई जाएगी। श्रोताओं, देश में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। किसान 4024598180 नंबर को व्हाट्सएप पर तिलहन किसान मित्र के नाम से सेव कर सकते हैं और मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन तथा अन्य तिलहन फसलों के बारे में किसी भी भारतीय भाषा में जानकारी ले सकते हैं। श्रोताओं, गरियाबंद जिले में सुपेबेड़ा जल प्रदाय योजना के लिए 10 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के पूरे होने से सुपेबेड़ा, सागुनबाड़ी, सेंधमुड़ा, खम्हारगुड़ा और ठिल्लीगुड़ा सहित 9 गांवों के लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सकेगा। इस योजना के तहत लगभग 80% कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं शेष बचे कार्यों को 5 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के पूरा होने से इन गांवों के 2000 से अधिक परिवारों को घर घर नल कनेक्शन का लाभ मिलेगा। श्रोताओं, वर्षा ऋतु में मछलियों के वंश वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान सभी तालाबों और जलस्रोतों में मत्स्याखेट कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष का कारावास या 25,000 रूपए जुर्माने का प्रावधान है। श्रोताओं, जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र गरियाबंद द्वारा आगामी 19 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा फील्ड स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड सहित 120 पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को ई रोजगार पोर्टल तथा छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करना अनिवार्य है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रही थी गरियाबंद जिले की चिट्ठी। आलेख था फरहाज मेमन का। ये आकाशवाणी रायपुर है। 6:10 हुए हैं। अब सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अनुरीमा शर्मा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री है आज जांजगीर चांपा जिला के गांव पोड़ी में 295 करोड़ रुपया ले ज्यादा के लागत वाले 341 छिन विकास काम के करीन लोकार्पण और भूमि पूजन। आज विश्व रक्तदान दिवस के मौका में देश भर समेत छत्तीसगढ़ में हुआ थे कई छिन कार्यक्रम। ए बछर के थीम रखे गए है मानवता के एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचावें। और मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचे मां और बेरा लग सकत है। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जांजगीर चांपा जिला के गांव पोड़ी में 295 करोड़ रुपया ले ज्यादा के लागत वाले 341 छीन विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करीन। ए मौका में श्री साय कहीन कि ये विकास काम मन के माध्यम ले सड़क,

0: पीए के पानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, नगरी अधोसंरचना, गांव के विकास ले जुड़े सहूलियत था बाढ़ ही। आज विश्व रक्तदान दिवस हरय। ए मौका में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव हा देशवासी मन ले स्वैच्छिक रक्तदान के अपील करे हैं। श्री नड्डा और श्री जाधव सोशल मीडिया पोस्ट में रक्तदान के महत्व बारे में जागरूकता बढ़ाए बर जोर दिन। ए बच्छर विश्व रक्तदान दिवस की थीम है मानवता के एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचावें। विश्व रक्तदान दिवस के मौका में आज छत्तीसगढ़ में घलो अब्बड़ अकन कार्यक्रम हुआ थे। एक कड़ी में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के छत्तीसगढ़ इकाई डहार ले लोकभवन में हुए समारोह में राज्यपाल रमेन डे कहा 30 झीन स्वैच्छिक रक्तदाता मल्ला सम्मानित करीन। ए मौका में लोकभवन में रक्तदान शिविर राखेगीस जेमा लोकभवन के अधिकारी कर्मचारी समेत आने मनखे मन घलो रक्तदान करीन। समारोह में बोलत राज्यपाल हकीन कि कोनो भी मनखे के सबले बड़का धर्म है दूसर के जीवन बचाना और एहर कहूँ अपन खुदे के खून के एक बूंद ले होही तो एखर ले बड़का कोनो पुण्य नहीं हो सके। उमन बतैन की थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कैंसर और एक्सीडेंट असन इमरजेंसी हालत में खून के जरूरत है जियई मरई के बीच अंतर तय करते। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तैयारी चलत आयुष मंत्रालय भारत सरकार और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग ले आज बिहनिया एक ठीन विश्व स्तरीय ऑनलाइन योग कार्यक्रम रखे गए रहीस। ये कार्यक्रम के उद्देश्य YouTube लाइव योग स्ट्रीम पर सबले ज्यादा देखैया मन के नवा विश्व रिकॉर्ड बनाना रहीस। एकर जरिए संसार भर के योग अभ्यासकर्ता और वेलनेस उत्साही मल्ला एक ठीन डिजिटल मंच में सकेले के प्रयास करेगी। ये ऑनलाइन योग सत्र बिहनिया 6:15 ले 7:35 तक रखे गए रहीस। एमा करीबन 130 देश ले लोगन मन शामिल हुईन। अवैया 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाही। एकर पहली दुर्ग पुलिस लाइन में आज सहज योग द्वारा स्वयं को पहचानो एक कार्यक्रम हुईस। एमा योग विशेषज्ञ मन योग के जरिया पुलिस कर्मी मन के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन खातिर उत्साह बढ़ाए बर जोर दिन। उमन यहू बतेन की मानसिक शांति और आत्म जागरूकता हा मन खे मल्ला नशा पानी ले दूर राखथे। जसपुर जिला अब रेलवे नेटवर्क ले जुड़ी। केंद्र सरकार है धरमजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नवा रेल लाइन प्रोजेक्ट ला विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करे है। करीबन 292 किलोमीटर ये रेल लाइन है जसपुर ला पहली बेर राष्ट्रीय रेल नेटवर्क ले जोड़ी। एखर ले क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और उद्योग मन ला घलो बढ़ावा मिले के उम्मीद है। कबीर प्रकट दिवस के मौका में दुर्ग जिला के करहीडी गांव में पुलिस विभाग डहर ले सड़क सुरक्षा अभियान के संगे नशा मुक्ति और साइबर जागरूकता कार्यक्रम रखे गए रहीस। कार्यक्रम दौरान लोगन मन ला ट्रैफिक नियम के पालन करे के संगे दुपहिया गाड़ी चलात बेरा हेलमेट लगाए बर जागरूक करेगीस। उन्हें साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी ले बाचे बर लोगन मन ला फर्जी लिंक में क्लिक नहीं करे के संगे कोनो भी मनखे ला ओटीपी नहीं दे बर अपील करेगीस। कार्यक्रम में माई लॉगिन कमांडो मन ला सुरक्षा किट बांटेगीस। राज्य सरकार डहर ले मोर गांव मोर पानी ए अभियान के चलत जल संरक्षण ला जन आंदोलन के रूप में देखे जाते। यही कड़ी में बलरामपुर जिला के रामचंद्रपुर विकासखंड में गवई के मनखे जनप्रतिनिधि और स्व सहायता समूह मन के मायलोगिन मन श्रम दान करके एक दिन में 2000 जल संरक्षण संरचनाला बनाई है। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय DPI है स्पष्ट करे है कि राज्य के सबो सरकारी और गैर सरकारी स्कूल मन परन दिन 16 जून के शुरू हुई। विभाग है 22 के सोशल मीडिया के आने आने माध्यम में 1 जुलाई ले स्कूल शुरू होए के भ्रामक और फर्जी सूचना प्रसारित करे जाते। DPI है पढ़ैया लयिका उनघर पालक और लोगन मन ले अपील करे है कि वो मन आधिकारिक सूचना ऊपर ही भरोसा करें। यही बीच जांजगीर में पत्रकार मन ले गोट बात करत मुख्यमंत्री है स्पष्ट करे है कि प्रदेश के सबो स्कूल परन दिन 16 जून ले ही खुल ही। उमन किहीन की तारीख आगू घुचाए बर कोनो चर्चा नहीं हुए हैं। उन्हें हर साल असन ए बछर घलो स्कूल मन मा साला प्रवेश उत्सव मनाए जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप

0: पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बढ़वो बांचे समाचार डहार। बिलासपुर में एनटीपीसी सीपत के बालिका सशक्तिकरण अभियान के काली समापन होगी। चार सप्ताह तक चले ट्रेनिंग में 121 जिन ग्रामीण नोनी मन योग, आत्मरक्षा, कंप्यूटर संवाद, कौशल और अंतरिक्ष विज्ञान समेत कई ठीन विषय के प्रशिक्षण लीन। कलेक्टर संजय अग्रवाल हा उखर पालक मन ले नोनी मन ला आगू बाढ़े के समान मौका देखातिर अपील करीन। ए मौका में एनटीपीसी हर बछर 10 जिन मेधावी नोनी ला कक्षा छठवीं ले बारहवीं तक निःशुल्क शिक्षा दे के घोषणा करे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है आज रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में भारतीय अंडर 18 हॉकी टीम के एशिया कप विजेता सदस्य अवि मानिकपुरी ले मुलाकात करीन। ए मौका में मुख्यमंत्री हकीन की छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ी अपन प्रतिभा, अनुशासन और कड़ा मेहनत के बल में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सुग्घर प्रदर्शन करके प्रदेश और देश के नाव ला उज्जर करत हैं। रायगढ़ जिला में जेल में धंधा एक जिन विचाराधीन कैदी के सस्पेंस हालत में मौत होए बाद उखर परिवार वाले मन हंगामा मचेन। काली हुरहा तबियत बिगड़े बाद एक कैदी ला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराई गई रहीस, जिहां इलाज के दौरान उखर मौत हो गई। शक्ति जिला के छपोरा में भारतीय स्टेट बैंक के फर्जी शाखा चलाए और नौकरी लगाए के नाम में ठग के फरार तीन जिन आरोपी ला माल खरोदा पुलिस गिरफ्तार करे ही। मामला में आगू घलो मुख्य आरोपी अनिल भास्कर समेत 6 जिन आरोपी ला गिरफ्तार करके जेल पठो दे गए है। और अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचे में और बेरा लग सकत है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी हा आकाशवाणी समाचार ला बताई कि आज उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो जगह में गरजई चमकई के संगे सीटर साटर पानी और गाज गिर सकत है। उन्हें अवैया तीन चार दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून हा कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कोनो कोनो जगह में पहुँच सकत है। अब थोरकुन समाचार सार मा। जांजगीर चांपा जिला में एकठिन कथित ऑडियो वायरल हुए बाद जिला शिक्षा अधिकारी है संविदा पीटीआई नल साय दिवाकर ला सस्पेंड कर दी है। जगदलपुर में हुए बस्तर आम महोत्सव में किसान मन आमा के 2000 ले ज्यादा प्रजाति ला दिखाई। और चंडीगढ़ में 10 जून ले 13 जून तक हुए राष्ट्रीय कैडेट जूडो प्रतियोगिता में कोंडागांव के हेमवती नागा कांस्य पदक जीते है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। मुख्यमंत्री है आज जांजगीर चांपा जिला के गांव पोड़ी में 295 करोड़ रुपया ले ज्यादा के लागत वाले 341 ठिन विकास काम के करीन लोकार्पण और भूमि पूजन। आज विश्व रक्तदान दिवस के मौका में देश भर समेत छत्तीसगढ़ में हुआ थे कई ठिन कार्यक्रम। ए बछर की थीम रखे गए है मानवता के एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचावें। और मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचे में और बेरा लग सकत है। एक रेसम छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इन्हें सिरावत है। जय जोहार।
2: प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले किए गए। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम गोधुली। लोकगीतों के कार्यक्रम गोधुली में सबसे पहले सुनिए साधारण दास और साथियों से ये सरगुजिया लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साधारण दास और साथियों से ये देवी भजन लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आप सुनिए घसिया लकड़ा और साथियों से ये सादरी लोकगीत।

घसिया लग रहा साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ श्रोताओं लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली यहीं समाप्त होता है। मीडिया में वो 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्स और FM 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। इस वक्त शाम के 6:30 होने वाले हैं। अब आप हमारे मीडिया वेब पर ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य एड वेस्टर्न बंकिंगम में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल सुनेंगे। FM बैंड और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

अभी आप सुन रहे थे अक्सर फिल्म का ये गीत। आवाज़ और संगीत था हिमेश रेशमिया का, गीत को लिखा था समीर ने। कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं के की आवाज़ में फिल्म आशिक बनाया आपने का ये गीत। संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का है, गीत को लिखा है समीर ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे केके को फिल्म आशिक बनाया आपने में, कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं जुबिन का गाया फिल्म गैंगस्टर का ये गीत। संगीत निर्देशन प्रीतम का है और अल्फाज हैं सईद कादरी के।
1: Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat. Yeah, I'll have this. Check this out.

जुबिन की गाय फिल्म गैंगस्टर के इस गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, 6:45 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी रायपुर है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुद्धू।
5: व्हाट?
6: ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
7: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
8: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
9: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
8: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
9: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
8: उमेश,

0: स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया कि राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल 16 जून से शुरू होंगे। मुख्यमंत्री ने आज जांजगीर चांपा जिले में 295 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंस्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है, साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के तहत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आज सुबह एक वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य YouTube लाइव योग स्ट्रीम के लिए सबसे अधिक दर्शक का नया विश्व रिकॉर्ड बनाना था। इसके जरिए विश्व भर के योग अभ्यासकर्ताओं और वेलनेस उत्साहियों को एक डिजिटल मंच पर एकत्र करने का प्रयास किया गया। यह ऑनलाइन योग सत्र सुबह 6:15 से 7:35 तक आयोजित किया गया। इसमें करीब 130 देशों से भागीदारी की गई। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले दुर्ग पुलिस लाइन में आज सहज योग द्वारा स्वयं को पहचानो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योग विशेषज्ञों ने योग के जरिए पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि मानसिक शांति और आत्म जागरूकता व्यक्ति को नशे जैसी प्रवृत्तियों से दूर रखने में सहायक होती हैं।

छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल 16 जून से शुरू होंगे। विभाग ने बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर 1 जुलाई से सत्र शुरू होने की सूचना प्रसारित की जा रही है, जो पूरी तरह भ्रामक और फर्जी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। इस बीच जांजगीर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के सभी स्कूल 16 जून से ही खुलेंगे।

0: केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। इस बीच जांजगीर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की सभी स्कूल 16 जून से ही खुलेंगे। उन्होंने कहा कि तारीख आगे बढ़ने के को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। हर साल की तरह इस वर्ष भी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। आज विश्व रक्तदान दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने देशवासियों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा और श्री जाधव ने सोशल मीडिया पोस्ट में रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं रखी गई है। विश्व रक्तदान दिवस पर आज छत्तीसगढ़ में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल रमेन डेका ने 30 स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर लोक भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोक भवन के अधिकारियों कर्मचारियों सहित अन्य लोगों ने रक्तदान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पौणी में 295 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 341 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री साय ने कहा कि इन विकास कार्यों के माध्यम से सड़क, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, नगरी अधोसंरचना तथा ग्रामीण विकास से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्य केवल निर्माण नहीं होते, बल्कि वे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बनते हैं। जशपुर जिला अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया है। करीब 292 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन जशपुर को पहली बार राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। इससे किसानों, व्यापारियों और युवाओं को लाभ मिलेगा। क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार द्वारा मोर गांव मोर पानी महाअभियान के तहत जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने श्रमदान कर एक ही दिन में 2000 जल संरक्षण संचराओं का निर्माण किया। अभियान का उद्देश्य वर्षा जल संचयन बढ़ाना, भूजल स्तर सुधारना और ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कबीर प्रकट दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले के करहीडी गांव में पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के साथ ही नशा मुक्ति और साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के साथ ही दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया। वहीं साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए लोगों से फर्जी लिंक पर क्लिक नहीं करने और किसी व्यक्ति के साथ OTP साझा नहीं करने की अपील की गई। कार्यक्रम में महिला कमांडो को सुरक्षा किट वितरित की गई। बिलासपुर में NTPC सीपत के बालिका सशक्तिकरण अभियान का कल समापन हो गया। 4 सप्ताह तक चले इस प्रशिक्षण में 121 ग्रामीण बालिकाओं ने योग, आत्मरक्षा, कंप्यूटर, संवाद कौशल और अंतरिक्ष विज्ञान सहित कई विषयों का प्रशिक्षण लिया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अभिभावकों से बेटियों को आगे बढ़ाने के समान अवसर देने की अपील की। इस मौके पर NTPC ने हर वर्ष 10 मेधावी बालिकाओं को कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में भारतीय अंडर 18 हॉकी टीम के एशिया कप विजेता सदस्य अवि मानिकपुरी से मुलाकात की। इस

0: अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। संस्कृति विभाग द्वारा भिलाई स्थित कुहुकी कला ग्राम संग्रहालय परिसर में आज से लोक वाद्य कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। लोक वाद्य संग्राहक रिखी छत्री ने बताया कि 23 जून तक चलने वाले इस कार्यशाला के दौरान खंजेरी, तंबूरा, गतका, तुरही, चरहे, चिटकुली, कुहुकी और रुंजू जैसे वाद्य यंत्र बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यशाला हर दिन सुबह 7 से 11 बजे और शाम 5 से 8 बजे तक आयोजित होगी। इसमें हर आयु वर्ग के लोग हिस्सा ले सकते हैं। रायगढ़ जिले में जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने हंगामा मचाया। कल अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद कैदी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए और मौत को लेकर हंगामा करने लगे। परिजनों ने जेल में मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस और जेल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज किया है। सक्ती जिले के छपोरा में भारतीय स्टेट बैंक की फर्जी शाखा संचालित करने और नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले फरार 3 आरोपी को मालखरौदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में पहले ही मुख्य आरोपी अनिल भास्कर सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आरोपियों ने 6 व्यक्तियों को बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर करीब 7,71,000 रुपये की ठगी की थी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में मानसून के पहुंचने में कुछ और समय लग सकता है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आज उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो स्थान पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। उन्होंने बताया कि यही स्थिति अगले 3-4 दिनों तक बनी रहेगी।
1: आज उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा, वज्रपात होने की संभावना है। ये मेघ गर्जन का गतिविधि जो है आगामी 4-5 दिन तक भी रहने की चांसेस है। मेघ गर्जन के साथ तेज हवा लगभग 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक तेज हवा, वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मॉनसून आज का स्थिति में देखा है तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में एंट्री होने में 3 से लेकर 4 दिन लगने की संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आगामी 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना जताई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। जगदलपुर में आयोजित बस्तर आम महोत्सव में किसानों ने आम की 2000 से अधिक प्रजातियों का प्रदर्शन किया। महोत्सव में बस्तर सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आए 1500 से अधिक किसान शामिल हुए। और चंडीगढ़ में 10 से 13 जून तक आयोजित राष्ट्रीय कैडेट जूडो प्रतियोगिता में कोंडागांव की हेमवती नाग ने कांस्य पदक जीता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया कि राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल 16 जून से शुरू होंगे। मुख्यमंत्री ने आज जांजगीर चांपा जिले में 295 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
3: चलो,
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव।
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: ये आकाशवाणी रायपुर है।
9: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए गए। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण करेंगे हम 7:20 पर। सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश, सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनिएगा रात्रि 8 बजे। नौ बजकर 15 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ईमेल की गूंज कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 9:30 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 बजे हम रिले करेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में कर्नाटिक वोकल जे एस श्रीराम का। श्रोताओं, ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आइए हम आपको बताते हैं कल हमारे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, 6:05 पर हम आपको सुनवाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। छः बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विचार बिंदु। 6:35 पर हम आपको सुनवाएंगे रामचरितमानस का गायन। गायन स्वर होगा भूपेंद्र सिंह का और संगीत संयोजक होंगे सतीश भाटिया। श्रोताओं, 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बात में सामायिक सुझाव। प्रातः 7 बजे आप सुनिएगा लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल। 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, ये थे कल हमारे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों का विवरण। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 7:05 हुए हैं। FM बैंड और न्यूज़ ऑन AIR पर अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा का आप लुत्फ उठा रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की गाई ये गज़ल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की गई ये गजल। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा का आप लुत्फ उठा रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं भूपिंदर सिंह के संगीत निर्देशन में मिताली सिंह की गाई ये गजल। रचना है कातिल राजस्थानी की।

मिताली सिंह की गाई इस गज़ल के साथ श्रोताओं सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:20 होने को हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुनवैया जम्मू किसान भाई मल्ला बिरजू भैया के राम राम। किसान भाई हो, उम्मीद है कि भाई रौर मन अपन खेती बाड़ी कर तैयारी में लग गए हो, और हम तो भाई किसान ही और ये हमर मुख्य काम है। और भाई भाई मानसून आए वाला है, वो हिसाब से जो है हमर जो किसान भाई हैं अपन बीज खाद के तैयारी ला पूरा करता है, और ज़रूरी भी है क्या कि भाई जब समय रहते तो वही टाइम जो है खेती कर काम भी शुरुआत करना जरूरी रहते, तो पहले से तैयारी बड़ा ज़रूरी है। किशन भाई अभी मानसून आए में तो तनिक लगता है कि भाई कुछ दिन लग ही, लेकिन ऊपर से पहले जो हम तैयारी कर सकते हैं उनमें खेती बाड़ी तो हले चाहे भाई कि जो खरीफ पर फसल आए, चाहे वो धान हो गई, मकई हो गई, अरहर हो गई, या जो दलहन फसल है ओकर तैयारी तो हमारे किसान भाई करते हैं, या फिर जो सब्जी जो बरसात में हमारे किसान भाई लगाते हैं ओके भी लगाते हैं। किसान भाई एक साथ साथ एगो और बढ़िया समय आए कि भाई अभी हम जो पौधरोपण कर सकत हन अपन बाड़ी में, अपन आसपास अपन सामुदायिक जमीन पे जो है हमन वृक्षारोपण यदि कर सकी तो बड़ा बढ़िया रही। काबर कि किसान भाई हो हमन रोरबन से गुठिया थे कि भाई हमारे जो पर्यावरण है ओला हमन कैसे बढ़िया रख सकत हक, तो भाई बढ़िया रखे में एक ठो जो काम है चाहे वो व्यक्तिगत कहली या सामुदायिक कहली वो आ है वृक्षारोपण करना।

और वृक्षारोपण कर हमन बात करी थी, देखिए एकर से हमार पर्यावरण तो सुधरबे करते, हमार हवा पानी तो बढ़िया होवेच करते, एकर साथ साथ हमन हमार जो आय कर साधन है वह बनते। यदि मैं बात करूं कि भाई हमन यदि फलदार वृक्ष लगाते हैं, और अभी बढ़िया समय है किसान भाई यदि फलदार वृक्ष लगाना चाहते हैं तो पहले स्थल चयन कर लें, भाई स्थान के चयन कर लें कि कहाँ लगाना है, कौन सा वृक्ष लगाना है, कितना दूरी में लगाना है, ओकर पहले से तैयारी कर लें, गड्ढा खोद लें, उसमें दवाई डाल दें दीमक मारे वाला, और बढ़िया खातु जो है सरल गोबर खातु जो है मिला दें और छोड़ दें। ओकर बाद जो है जो पहले से चयन करें हैं कि भाई ये फलदार वृक्ष लगाना है, ओके जो है उद्यान विभाग से या फिर जो और भी जहाँ से भी उपलब्ध हो तेरा और मन के ओला जरूर लगाई। कहें कि जब हमन पेड़ पौधा की बात करते हैं तो भाई सबले जो बढ़िया चीज़ आए पर्यावरण संरक्षण में वो आए भाई वृक्षारोपण। तो किसान भाई ये बढ़िया मतलब एक मौका भी है और बढ़िया एक आयकर साधन भी बनते। किसान भाई यदि हमन मान ले कि भाई अमरूद कर बगान लगाना चाहतन, आम कर बगान लगाना चाहतन, या लीची कर बगान लगाना चाहतन, कटहल कर बगान लगाना चाहतन, तो अभी बहुत बढ़िया समय है और बढ़िया किस्म के जो है कलमी जो वृक्ष हैं ओकर पौधा ले ली। काबर की देखी एकर से हमला आर्थिक आय तो भेटाबे करते, और एकर बीच मान ली कि भाई आमा है जो हम कम मान ली कि भाई 10 मीटर दूरी पर लगाथन, एकर बीच में जो जगह जब तक 2-3 साल तक हमार जो पेड़ बड़ा नहीं होते तब तक हमन अंतर्वर्ती जो है फसल ले सकथन, हल्दी ले सकथन, अदरक लहसुन प्याज और भी फसल ले सकथन, और जब हमारे पेड़ बड़ हो जाते तो भाई साल में गुट निश्चित आय कर गुट साधन भी बन जाते। तो भाई ये तो देखिए फलदार वृक्ष कर बात में करत हूँ, और लेकिन एकर अलावा भी हमार बहुत सारा जरूरत रहते, जैसे कि भाई बांस कर जरूरत पड़ते तो हमन अपन बाड़ी में बांस लगा सकथन, अपन खेत के किनारे बांस लगा सकथन। तो बांस लगाए से एक तो ये फ़ायदा होते कि भाई एक तो जंगल पे भार कम हो जाते, दूसरा जो है हमला घर बनाना है या फिर कहीं घेरावा करना है या फिर कहीं भी ज़रूरत हो वो हिसाब से हमन बांस का उपयोग कर सकथन, और एक साथ साथ हमारे पर्यावरण भी बढ़िया रहते, तो हमन बांस लगाए के बारे में भी सोच सकथन। और एक अलावा और भी पेड़ा हैं, इमारती पेड़ा हैं, या फिर जो कह ली कि भाई जो कृषि के खेत के किनारे जो सुबबूल है, नींबू है, ये तरह के जो छोटा झाड़ीदार पौधा है उमल्ला अमल लगा सकत हैं। एक अलावा जो इमारती पौधा की मैं बात करता हूँ कि भाई सागवान लगा सकत हैं, या फिर जो है नीलगिरी महोगनी नीलगिरी कर जो पौधा है, या फिर कली नीलगिरी, तो वैसे भाई कुछ किसान में मन कथन कि पानी ज़्यादा सूखते हैं, तो कहकर मतलब कि जो धौरा है या फिर दूसर जो वृक्ष हैं उकर चयन अपन स्थान के अनुसार किसान भाई कर सकत हैं। एक से क्या होती कि भाई देखिए फल के अलावा जो है हमारे जो पर्यावरण है वह भी बढ़िया रही। किसान भाई जब हम वृक्षारोपण की बात करते हैं, देखिए ये तो भाई व्यक्तिगत होगी इसकी अपन बाड़ी में हम लगा सकते हैं, एकर अलावा जो सामुदायिक जमीन है या फिर ग्राम पंचायत कर जो जमीन है या फिर जो हमारे ग्राम पंचायत कर किनारे किनारे कर बात होगी, सिसूल कर किनारे बकर बात होगी, किनारे किनारे हाथा कर अंदरे, या फिर कह ली कि जो हमार डबरिया है या फिर जो कह ली अमृत जलाशय ओकर किनारे किनारे भी हम पेड़ पौधा लगा के अपन गाँव ला हरा भरा कर सकत हन, बढ़िया जो है भाई जल स्तर बढ़ा सकत हन, तो एक बारे में हमला सोचना जरूरी है। किसान भाई जब हमन पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो जल संरक्षण के भी बात करते हैं, कहें कि अभी हमन गर्मी महसूस कर रहे कि भाई कितना पानी कर कमी है, धीरे धीरे पानी जो है जल स्तर जमीन कर कम हो जाता है, हमारे डबरी में भी पानी सूखत जाता है, हमारे नरवा भी सूखत जाता है, तो एक बारे में भी हमला सोचना पड़ी भाई। अब जो हम नरवा के बात करते हैं तो भाई ये ला तो सामुदायिक तौर पे सोचना पड़ी कि कौन कौन जो है अपन नरवा ला हम जिंदा रख सकत हन साल भर, जेकर से हमला पानी भेटाए, हमारे गरु मन पानी पिए, और ओकर से जो है पेड़ पौधा जो हम लगातन मन के सिंचाई कर सकी, खेती कर सकी, अपन आय बढ़ा सकी। तो जल संरक्षण भी बहुत जरूरी है, एक बारे में भी हमारे जो किसान भाई हैं चाहे वो ग्राम सभा में चर्चा कर सकते हैं, अपन चौबाल बैठकी में चर्चा कर सकते हैं भाई कि कैसे जो है अपन जल संरक्षण करना है। किसान भाई जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो माटी संरक्षण की भी बात करते हैं कि भाई कौन कौन जो है हम अपन माटी ला सुरक्षित रख सकते हैं, कबर कि भाई हम माटी में उत्पादन तो करत हन लेकिन वही रासायनिक खादों डालत हन, जेकर से उकर स्वरूप जो है भौतिक स्वरूप रासायनिक स्वरूप बिगड़त जात है और हमार मिट्टी जो है थोड़े खराब हो जाते हैं। तो बड़ा जरूरी है कि भाई अपन मिट्टी ला बचाए बरों में जो है गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद, हरा खाद कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करी ताकि हमारे खेत कर मिट्टी जो है जीवंत रहे, उसमें

जीवाणु रहें बढ़ियन हवादार, ह्यूमस जो है उनमें बने रहे, ताकि जो उत्पादन भी बढ़िया हो, हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य भी बढ़िया हो और जो उत्पादन हो वो भी गुणवत्तापूर्ण हो, जगह से भाई जिला जो खाएं तो मन के भी स्वास्थ्य बढ़िया रहे। तो चारों तरफ सोचना जरूरी है कि भाई हमारे माटी में जो उत्पादन करब वही हमन खाथन और वही जो है हमारे शरीर पर असर डालते। तो भाई ज़्यादा रासायनिक दवाई या फिर रासायनिक खातू का उपयोग करबो तो फिर हमारे स्वास्थ्य भी प्रभावित होते, हमारे पर्यावरण भी प्रभावित होते। और जब हम पर्यावरण के बात करते हैं, जैव विविधता के बात करते हैं किसान भाइयों, तो उनमें जमोजात आ जाते हैं, चाहे वो कीड़ा फतिंगा है, चाहे पेड़ पौधा है, चाहे मानव है, पशु हैं, जमोजात आ जाते हैं और जमो जो हैं एक दूसरे से जुड़ी ना है। किसान भाई अभी देखा कि बहुत सारा जो चिड़िया चुरुंगा हैं खत्मात जाता है, बहुत सारा देखा कि जो जंगली जानवर हैं वो खत्मात जाता है। तो ये सब मल्ला बचाना भी जरूरी है, काबर कि ये मन जो है एगोट कहली कि जैव विविधता का एगोट रिंग या साइकिल से जुड़ी ना है, जीवन कर जिंदा रहना बड़ा जरूरी है। किसान भाई यदि हम छोटा छोटा बात करें, अपन खेती कर बात करें कि हम जो रासायनिक दवा या फिर रासायनिक खादु कर जो प्रयोग करते हैं, हमन देखते हैं कि हमारे खेत में पहले कितना केचुआ रहत रही, लेकिन अभी हम देखा तो हमारे खेत में केचुआ नहीं भेटा है। केंचुआ जो है बढ़िया माटी ला रेंग रेंग के जो है बढ़िया भुरभुरा करें, बढ़िया ह्यूमस कर दें ताकि उत्पादन भी बनल रहे, लेकिन आजकल देखा था कि हमारे खेत में केंचुआ नहीं भेटा है। जो कहली सूक्ष्म जीवाणुआ है जो मिट्टी ला बढ़िया रखते हैं वो नहीं भेटाएँ, काबर ये सब होता है, ये सब एकर से होता है कि हम जो रासायनिक दवा है रासायनिक खातु है आँख लब बैन करके डाला जाता। और एक सिक्का होता कि हमारे जो मित्र कीट हैं चाहे मेढक हो गई, पहले खेत में मछली ज़्यादा भेटात रही, नोहू मन खत्म आता है, मधुमक्खियों मन में असर पड़ाता है, और कहले कि जो रासायनिक दवा मारा थन किड़वा मारे बार मार दे थन और फिर किड़वा मतलब चराई मन खाए के फिर चराइयों मन मर जाता है। तो ये सब जो है बड़ा गड़बड़ाता है मामला, जो है संतुलन जो है हमारे जो जैव विविधता कर बड़ा गड़बड़ाता है और एक असर जो है हमारे जीवन पे भी धीरे धीरे देखना शुरू हो गई से। तो किसान भाई समझना जरूरी है कि ये जो संतुलन है वाला बना के चलना है, चाहे वो वृक्षारोपण कर संतुलन हो, चाहे पेड़ पौधा का संतुलन हो, माटी का संतुलन हो, जीवन के संतुलन हो। तो भाई संतुलन कर स्थिति में जब हम आगू बढ़बो तो मैं तो कहता हूँ कि भाई वही ला विकास कथे, जैमें कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, हमारे जीवन भी सुरक्षित रहे, हमारा विकास भी सुरक्षित रहे। तो वो हिसाब से हमला सोचना है और वो हिसाब से जो है हमन के आगे बढ़ना है। और किसान भाई जब हमन बात करते हैं पेड़ पौधा के, तो देखिए हमारे आसपास जो जंगल है उकर भी सुरक्षा बड़ा जरूरी है, खबर कि जंगल आए तो भाई हमारे कर हमारे तरफ कर जो वातावरण है बढ़िया ना है, पानी भेटा आता है, जड़ी बूटी पताई मुखारी जमो जात भेटा आता है। तो भाई जो हमला कहली जीवन देता है सब सबले बढ़िया है, तो भाई ऑक्सीजन देता है जिला हम सांस लेता, तो जो हमला जीवन देता है भाई ओकर जीवन ला भी बचाना जरूरी है, काबर कि जब ओकर जीवन संकट में पड़ी तो फिर हमरो जीवन जो है संकट में पड़ जा ही। और कहे के मतलब है कि भाई जब जंगल ज़्यादा नहीं रहे तो वो जगह कर स्थिति तो समझ सका था ना, गर्मी में ये बात लामन जाना था कि भाई कौन कस गर्मी बढ़ाता है और वो स्थिति के हमन सामना भी करा था। तो जे क्षेत्र में ज़्यादा जंगल रहते वहाँ के वातावरण भी बढ़िया रहते, वहाँ पानी भी बढ़िया रहते, वहाँ कर हवा भी बढ़िया रहते। तो ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जंगल है ओला बचाना है, चाहे वो गांव स्तर पे बचाई चाहे ब्लॉक स्तर पे जो समिति भी बनी चाहे देखिए एक सुरक्षा बरत, लेकिन जागरूकता बड़ा जरूरी है। जागरूकता एक बार किसान भाई की जो चीज़ हमारे पास रहते हैं महत्व तो हम नहीं समझन, लेकिन जब वो चीज़ हर खत्माए जाते तब ओकर महत्व हर समझ में आते कि भाई जंगल जीवन भर कितना जरूरी है। तो किसान भाई हो ये जिम्मेदारी ला हमला समझना है कि अपन जो जंगल बाची से हमारे आसपास हो के हमन कैसे बचा सकत हन और कैसे सुरक्षित रख सकत हन, चाहे वो वन प्रबंधन समिति कर माध्यम से हो, चाहे ग्राम सुरक्षा वन समिति कर माध्यम से हो। तो ये सब हमन जो है अपन चर्चा कर सकत हन, अपन जो ग्राम सभा है उकर एजेंडा में शामिल करके चर्चा कर सकत हन कि भाई कौन कस ये साल वृक्षारोपण है करना है, कौन कस जो है इस साल चराई नहीं कराना है वो तरफ, कौन कस जो है भाई इस साल कितना पेड़ लगाना है, कहाँ लगाना है, जो पेड़ लगी से उसके सुरक्षा पर का का नियम बनाना है। तो ये सारा काम जो है अपन हमन अपन ग्राम सभा में तय कर सकते हैं, जो हमारे ग्रामीण भाई हमन से चर्चा कर सकते हैं कि भाई कौन कस जो है हम अपन गाँव ला हरा भरा कर सकते हैं, अपन गाँव के जंगल ला सुधार सकते हैं, संवर्धन संरक्षण करे पर नियम बना सकते हैं। तो ये सब
करना पड़ी, काहे कि

ये हम सब के जीवन से जुड़ल बात है, कोई एक व्यक्ति कर बात ना लागे, कहे कि जीवन सबकर जुड़ी सा है, कहली हवा से पानी से, तो एक बार जरूरी है कि भाई जंगल ला बचाई और सब करे दायित्व बनत है, जिम्मेदारी बनता है कि ये सब ला हमन जो है बचाई। किसान भाई हो गुट बात तो और करबो, और देखिए आज एक गुट दिन भी है और एक गुट ऐसा दिन है कि भाई ओकर चर्चा करना भी बड़ा जरूरी हो जाते। कभी कभी हम देखते हैं कि भाई रोड में काकरो एक्सीडेंट हो जाते हैं, और जब एक्सीडेंट हो जाते और तुरते फुरते हमन जो है हॉस्पिटल पहुँचाथन, तो डॉक्टर मन कहते हैं कि भाई एला ब्लड खून चढ़ाए कर जरूरत पड़ी, तो वो घिंचो है देखिए वो जरूरत के हिसाब से खून नहीं बैठाए तो जीवन बड़ा मुश्किल में पड़ जाते। तो किसान भाई हो आज है विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस आज ही के दिन जो है हमन मनाथन, और ये दिन मनाए कर पीछे उद्देश्य मकसद ये है कि भाई जो रक्तदान करते हैं, जो जीवन बचाते हैं उमन के, देखिए उमन के प्रति कृतज्ञता या धन्यवाद कह कर दिन भी आए कि भाई जो ऐसा मन से जो अपन स्वेच्छा से जो रक्तदान करते हैं, वो रक्तदान से जो है जो संकट में जेकर जीवन है ओकर जीवन ला बचाते हैं। तो आज का दिन जागरूकता कर दिन भी आए कि भाई जो है हमन ला रक्तदान करना चाहिए, और रक्तदान करे से कोई कमजोरी नहीं आए। रक्तदान जो है 18 से लेके कह ली कि 65 साल तक कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकत है। और देखिए रक्तदान से का होते कि भाई दूसर के जब जीवन बास थे, जीवन मिलते तो कि भी लगते कि भाई दुनिया बड़ा बढ़िया ना है, कह लिए एक दूसर कर प्रति प्रेम बढ़ते, एक दूसर के प्रति जो कह लिए कि भाई एक गोट बंधन है वो ज़्यादा मजबूत होते कि भाई दूसर कर खून से जीवन बचीस, और जो रक्तदाता है होकर भी कह लिए कि भाई विश्वास बढ़ते, गर्व से वो भी कहते हैं कि भाई देखिए हमन काकरो जीवन बचाए हैं, और जीवन कर उद्देश्य भी आए कि भाई हमन एक दूसर के काम आई। तो बड़ा बढ़िया दिवस है विश्व रक्तदाता दिवस आ जाए, और एक बारे में जो है हमन बात कर सकत हन, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपन स्वेच्छा से रक्तदान कर सकत हन। और देखिए इमें कोनो ज़्यादा समय भी नहीं लगे, रक्तदान देह में कोई पैसा भी नहीं लगे, तो हमन हॉस्पिटल जाके जो है जो भी है उचित हॉस्पिटल है वहाँ पे हमन रक्तदान कर सकत हन, ताकि हमर खून करदान से हमन रक्त करदान से दूसर कर जीवन बच सके। तो एकर से बड़ा जीवन में कोई कह ली कि भाई पुण्य कर काम नहीं हो ही। तो किसान भाई आज जो कह ली विश्व रक्तदाता दिवस है, और ऐसे भी कहते हैं कि भाई रक्तदान जो है दुनिया कर सबसे बड़ा दान है, महादान है। तो किसान भाई गुड बात तो और करबो, लेकिन मैं कहते रहन कि एगो गुट गीत सुन लेथन जे लगाते हैं शंभू राम और उनकर संगता मन।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं

0: किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: किसान भैया जी ये संदेश मतलब सुनत रहे। किसान भैया अभी खरीफ कर समय है और हमारे जो किसान भाई हैं अपन खेत कर हिसाब से अपन जलवायु के हिसाब से भाई जो है धान कर किस्म कर चयन करते हैं। लेकिन किसान भाई एक बात कहूँ कि कोई भी खेत हो चाहे मन वो छिड़कवा विधि अपनाई या फिर रोपा विधि अपनाई जो धान कर थरहा है ओकर बढ़िया होना बड़ा जरूरी है। और देखिए वही क्रम में सबसे पहले तो बात आती है कि भाई बीज चयन कर और बीज चयन के जब हम बात करते हैं तो भाई हमारे जो किसान भाई मन जानबे करते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में कौन सा धान लगे और जो धान है आज बढ़िया बीज निकाले पर जरूरी है कि जो नमक घोल कर जो कहली की जो बनाते हैं और नमक घोल बनाए पर किसान भाई जो हैं जैसे कि मान ली भाई 25 लीटर पानी लेता है तो 2.5 किलो नमक ले लें और फिर उसमें जो है अपन बीज मल्ला डाल के देख लें और जो तनिक ऊपरे आएगी इन्हें या जो कह ली कि भाई जो हल्का बीज आए उमन ऊपरे आ जाते हैं वाला छान के हटा दी। तो भाई नमक घोल से उपचारित करे से एक तो भाई बीज शोधन कर जो हमन बात करते हैं वो पूरा होते तो के बढ़िया से निकाल के वो नमक पानी से फिर जो है 3-4 पानी से धो के फिर जो है छाया में वाला सुखा लें और जब बढ़िया तनिक धान सूख जाए तो उकर बाद जब कह ली कि भाई थरहा तैयार करना है तो उकर से पहले का तैयारी भी बड़ा ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं कि भाई बीजोपचार तो चाहे वो रासायनिक दवा थायरम से कर लें या फिर जो है जैविक दवा से उपचारित कर लें लेकिन उपचारित जरूर करें। और उपचार करे कर बाद जो है मान ली कि भी ले जाना चाहते हैं भाई अपन थरहा कर जो बेड बनाए हैं जो क्यारी बनाए हैं तो क्यारी भी देखिए बड़ा हिसाब से बनाना पड़ते मान ली कि भाई 1 एकड़ खातिर क्यारी बनाना है तो 8-10 डिसमिल जो ज़मीन रहते 8 डिसमिल वो में बढ़िया क्यारी बनाए और क्यारी छोटा छोटा बनाए और किनारे किनारे नाली जरूर बनाए काबर कि भाई ज़्यादा बारिश होते तो देखिए ज़्यादा जब बारिश होते तो हमारे थरहाला नुकसान पहुँचाते तो बड़ा ज़रूरी है कि मन छोटा छोटा क्यारी बनाई और क्यारी भी बड़ा कह ली कि भाई बड़ा ध्यान से उसमें बढ़िया जो है खातों डाली ताकि जो थरहा है वो बढ़िया मजबूत हो। किसान भाई गलती हमारे से ये हो जाती कि हमारे जो थरहा है कमज़ोर रहते और फिर वही कमज़ोर पौधा ला मन ले जाके खेत में लगा देतन तो ओका से हमारे जो उत्पादन है 25-30% प्रभावित होते। तो बड़ा ज़रूरी यह है कि भाई जो हमारे थरहा है हमारे जो रोपड़ी है वह स्वस्थ रहे और जब रोपणी स्वस्थ रही तो हमारे धान का उत्पादन भी बड़ा बढ़िया हुई। तो किसान भाई जो है ये बात कर जरूर ध्यान रखें कि भाई बीज उपचार जरूर करें अपन बेड या क्यारी जो है बड़ा बढ़िया तरीका से बनाएं और देखत रहें कि भाई थरहा जो है हमारे कितना बढ़िया ना है हमें जो भी कह ली कि भाई खातू कर जिंक कर या फिर जो भी है पोटास कर कमी है तो हमें जो है डालत रही और बढ़िया से उगाए पर जो है कह ली कि भाई ओकर पोषण बड़ा ज़रूरी है। और जब भी थरहा निकालें तो देखिए 20-25 दिन के बीच जो है थरहा कह ली कि थरहा से उठ के जो खेत में चल जाना चाहिए। एक से क्या होते कि यदि ज़्यादा दिन हो जाते तो फिर खेत में वो पौधा ला जमीन पकड़े में समय लगते और पौधा हो जाते कमज़ोर। तो बड़ा ज़रूरी है कि समय से जो है हमला एकदम बिल्कुल तय करना है कि भाई अपन जो रोपनी भी बढ़िया रहे और अपन जो जामन खेत में ले जाना है वोकर भी हमने पहले से तैयारी कर ली और वो हिसाब से जो है यदि रोपा विधि कराता है तो फिर एक लाइन से रोपा विधि करें ताकि जो खरपतवार है उसके निकाले या फिर ओकर मचाई करे में भी आसानी हो। तो कहकर मतलब है किसान भाई कि यदि हम थोड़ा सा ध्यान दिए और थोड़ा सा भाई अच्छा तरीका से खेती करी तो देखिए धान की खेती में भी बढ़िया लाभ भेटा थे। तो देखिए किसान भाई अभी खरीफ कर तैयारी चला थे और आज जो हमारे कार्यक्रम है हमर किसान इसमें आज कर जो हमारे किसान हैं बहादुर सिंह जी जो गांव रकेली उदयपुर कर रवैया हैं और ये जो है गर्मी में भी बड़ा बढ़िया धान की खेती कर रही हैं और अभी खरीफ में भी धान के खेती के तैयारी करत हैं। तो उनकर से मुरगोट बात हुई से कि भाई कौन कस तैयारी करत हैं कैसे काका जो है जुटात हैं आदान तो ये गोट बतलाई सुनल जाए।
2: किसान भाई आज मोर साथ हैं गुट प्रगतिशील किसान तो उनका से गोट बात करके जाना था कि कैसे खेती करते हैं कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अपन नाम बताइए।
3: बहादुर सिंह।
2: कौन गांव?
3: रकेली ग्राम रकेली।
2: तो बहादुर जी अभी गर्मी में कौन कौन सा फसल लें?
3: मक्का रही लौकी रहीस।

0: ओकर बाद में कुछ भिंडी उंडी रहीस आए कोहड़ा उहड़ा बस कुछ मिर्चा उर्चा खाए पिए बड़ी ज्यादा तो मन नहीं रहीस। बेचे वाला मक्का रहीस लौकी रहीस बस यही मत बेचे वाला रहीस कुछ तरबूज रहीस।
1: का सिंचाई सुविधा है
0: बोर से?
1: बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो गर्मी के भी धान भी लगाए रहे?
0: हाँ हाँ।
1: अच्छा गर्मी धान कितना में लगाए रहे?
0: तो ज्यादा में नहीं लगाए रहे लगभग लगभग एक एकड़ में।
1: तो गर्मी धान में उतना रोग राई नहीं लगे?
0: नहीं लगे उन्हें मतलब बायल में नहीं मरे जिसे बरसात सीजन में ज्यादा मतलब बायल मरते हैं। तो अभी मैं जीरो फूल के बायल में नहीं मरे।
1: अच्छा तो जीरा फूल लगाए रहे?
0: हाँ जीरो फूल लगाए रहे बाकी जीरा फूल लकारा कुछ देश।
1: अच्छा हाँ। बीच में आ रही?
0: हाँ हाँ बीच में आ रही छोटा छोटा।
1: अच्छा।
0: जब वो तैयार हुई सब कारा पाई सो झर गई।
1: अच्छा हाँ। चलिए भाई देखिए प्रकृति के ऊपर निर्भर है खेती तो।
0: हाँ।
1: अब किसान जो है भगवाने भरोसे है
0: भगवान।
1: तो अभी गर्मी में जैसे मकई में कुछ कमाएं?
0: हाँ कुछ कमाएं में।
1: तो हाइब्रिड रही?
0: हाँ हाइब्रिड में रही।
1: अच्छा तो अभी बरसात में फिर लगाब मकई?
0: हाँ लगाब।
1: अच्छा
0: मक्का इसे बरसात में मूली भी लगाते हैं।
1: अच्छा
0: और रहर भी खेती करते हैं उर्दी भी खेती कर लेते हैं।
1: वाह
0: हाँ।
1: तो कुछ यंत्र भी रखे हैं ट्रैक्टर वगैरह?
0: हाँ ट्रैक्टर है।
1: हाँ तो भाई ट्रैक्टर से बढ़िया जुताई हो जाते?
0: हाँ ट्रैक्टर में बढ़िया जुताई यही साल ले हैं ट्रैक्टर।
1: बहुत बढ़िया बहुत। हाँ। बढ़िया। तो खेत की अभी तैयारी कैसे कर रहे थे?
0: तो अभी सब जोत के अभी फिट कर रहे थे। हाँ अभी ओकर ऊपरे में फिर घास उस मत जाम ही तेकर पर दावा मारल जाही जो मक्का भी बुना चाहे तुहर वो मूली भी करब। उन्हें एक बार घास के मतलब अभी उग जाये अभी जोते हंते में तेकर ओकर बाद मोला मार के अब फिर जोत देवो तो फिर खत्म हो जाये बन। अब फिर गोटे एगो दूगो जाम ही तो मैं फिर दावा मारब तो जो मूली जाम जाए उकर बाद में मारब चाहे मक्का जाम जाए उकर बाद में मारब फिर।
1: बढ़िया। तो अभी मतलब खेत के जुताई चलता है?
0: हाँ अभी।
1: तो अभी देखा था बहादुर जी कि हाँ। अभी तो देखे बारिश पहले आ गई।
0: हाँ तो अभी तो वो बारिश सर कामे कराई से काहे कि वो घास जो गुदा झरे रहते बीज तेला जाम वो जाम जाही ओला जोत देवो तो फिर गाँव जाम जाही फिर दावा मार देवो तो खत्म हो जाये बंद।
1: तो हाँ। बढ़िया। तो इस साल मानसून की क्या अंदाज लगत है?
0: तो मानसून तो भाई अब एक अषाढ़ बिना खेती यहाँ हो नहीं पा रहे। हाँ हम एक अषाढ़ में जब पानी मानसनी है।
1: अच्छा।
0: अभी तो इलाकराशिये मानस है ये जाम पाके बार डोरी पाके बार आमा पाके वाला ये पानी ही है।
1: अच्छा
0: हाँ और जो खानी छानी छपर वाला खपरा वाला ला बजराय वाला है अभी उधन ही एक बात फिर छवाही तो खपरा थोड़ा सा पानी पास है तो वजन हो तो नहीं उड़ा ही हवा।
1: अच्छा तो अभी जैसे मतलब बारिश ठीके हुई?
0: ठीके हुई से है।
1: बढ़िया ना। तो ऐसा उम्मीद है कि भाई बारिश ठीक हुई लेकिन वैज्ञानिक मन कहता है कि भाई कम तनिक बारिश हो ही वो तक बढ़िया नहीं हुई।
0: हाँ।
1: तो मन सलाह ये देते हैं कि भाई कम धान की अवधि लगा जाए। चलिए और तो अब जैसे बताइए उसे करब लेकिन कौन कौन सा धान लगा था अभी खरीफ में?
0: तो अभी तो ज्यादा मोटे धान मतलब लगा थन
1: हाइब्रिड।
0: हाइब्रिड।
1: अच्छा मोटा कहे लगा थन?
0: तो बेचे के लाई गाँव कूद भाई सोना मुनम खाओ पर लगाए ले थन।
1: बढ़िया बढ़िया।
0: हाँ।
1: तो बहादुर जी एक बात हमन देखा थन कि जो हाइब्रिड हमन खेती करे थन में लागत ज्यादा है रोग राई ज्यादा है का?
0: तो लगते दवा बीरो तो जरूरी है मारना समय समय में वो जब रोग नहीं पकड़ रही तब से मारना पड़ते।
1: अच्छा बीज उपचार करते हैं किसान भाई मन? बीज उपचार
0: हाँ कर लेते हैं कोई कोई वो जैसे हाइब्रिड मतलब तो नहीं जैसे वो आ रही 64 R 36 एमन मतलब कर लेते हैं।
1: हाँ। बढ़िया बढ़िया।
0: हाँ।
1: तो भाई बीज उपचार करे से क्या होता है तो तनिक रोग राई कम हो जाते
0: कम हो जाते अभी जैसे जो फसल काट के।
1: हाँ।
0: जो धान कोई रखी यो आ रही 64 इमन मला वो आ रही 36 मला।
1: हाँ।
0: तो इमन ला नमक पानी मतलब वे बोत के और बढ़िया सुखवाए के और रखल गई से है।
1: भाई बीज चयन करके तो यही। हाँ, तरीका
0: तो
1: है
0: उन्हें कहे के मतलब कि धान के जिसे आदमी के टीका लगते ना बच्चा में एक टाइप का रो टीका लग जाते।
1: बड़ा बढ़िया बात है। हाँ, कि भाई पहले तो भाई।
0: हाँ।
1: नमक पानी में डुबा के बढ़िया धान ला निकाल लेते
0: निकाल ले।
1: हाँ,

0: भी जो उपचार करके लगाने लगाए से तनिक रोग कम लाग
1: कम लाग
0: बढ़िया बताए रोडे। तो अभी जैसे अभी हमन देखा था कि भाई यूरिया डीएपी खाद तो हमन डालवे करथन
1: हाँ।
0: और हम देखा था कि हमार जमीन जो है खेती कर कठोर हो जाता है
1: हाँ।
0: और कठोर हो से देखिए तनिक मनिक बंजर भी होता है धीरे धीरे नहीं
1: हाँ।
0: तो ये जो गोबर खातू है कंपोस्ट खातू है एकर का महत्व है और किसान मन कैसे करत है?
1: तो उतना तो अब वो गोबर हो ही नहीं पाता है पशु पाले नहीं सकते है तो कर जगह में कुछ पोटास भी हल्का हल्का सबे भी खाद डाल जाते हैं हाँ। तो मैं जमीन उतना बजर नहीं हो एक एक खाद लग के दही जैसे तो जमीन बजरा जाते पोटास उतास डाल दही तो थोड़ा सा कुंवर हो जाते
0: हाँ। तो मैंने ये जो गोबर खातू डालना थोड़ा जरूरी है
1: हाँ जरूरी है बाकी अब गोबर उतना नहीं हो पाए पूरा खेत में
0: हाँ। तो पहले पशुपालन ज्यादा रही इसका
1: हाँ पहले ज्यादा रही तो परिवार मान अलग तलग नहीं हो तो जो दो भाई आए तो एक भाई चराते रहे ओसरी पारी।

और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहकर अनुमाना है। तो इस हिसाब से जो हमारे किसान भाई हैं अपन जो खेती बाड़ी कर तैयारी करें और जो खरीफ कर जो समय है ओकर सदुपयोग करें। और किसान भाई ए धार भाई यहू सोचें कि हमन के तिलहन के जो फसल है या फिर जो दलहन फसल है ओहू के बारे में सोचना जरूरी है। कहें कि भाई हमार कहली कि देश में दलहन करो तनी कमी आए तो एकरो बारे में सोची कि जो अरहर है या फिर जो कहली कि कुर्थिया है उड़दा है तो वो हिसाब से हमन के दलहन फसल के बारे में भी सोचना जरूरी है। एकर अलावा हमन जो मोटा अनाज है ओकर बारे में भी सोच सकत हन काबर कि भाई देखी मोटा अनाज के भी मांग है और समय के हिसाब से एकर खेती भी बड़ा जरूरी है। तो किसान भाई देखी गोट बात करे कर तो ढेरच बात है लेकिन समय के साथ खेती और समय के साथ काम बड़ा जरूरी है। तो आज चल जाए राउर मंजक काल फिर भेटाबो तो कहल जाए राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आप ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य एडबस्टन बर्मिंगम में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल हमारे मीडिया वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्स पर सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। FM बैंड और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुनिए सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश, सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम। स्वागत है साथियों आप सभी का आज इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ रिजवान। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म साजन के इस गीत के साथ। आवाज है अलका याग्निक की, नदीम श्रवण का संगीत निर्देशन है और बोल हैं समीर के।

सीता आकाश आयुषी सागर यशी हनी पूजा सीता एवं परिवार के सभी सदस्यों ने फरमाइश भेजी थी। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना उमा राज दिव्या भारती और परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी फरमाइश भेजी थी। पराड़ी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन पराग टेलर तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन ने फरमाइश भेजी थी। मध्य प्रदेश मरिया शाह हमारे श्रोता संतोष कुमार राव भारती विकास सिंह और ओम प्रकाश सिंह ने अपनी फरमाइश भेजी थी। दरबार कॉलोनी सनावत से हमें फरमाइश भेजी थी किशोर कुमार सावले रेखा सावले हिमांशु अनुराग सुलोचना और प्रणव ने। राज पैलेस मऊनाथ उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक आर्यन वर्मा ने गीत सुनना चाहा था। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने फरमाइश भेजी थी। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति और शिवांश वर्मा ने गीत सुनना चाहा था। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता ने गीत को पसंद किया था। ग्राम पंचायत कौशलपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सुखराम सिंह मरावी ने गीत की फरमाइश भेजी थी। आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। कार्यक्रम में अगले गीत के फरमाइश करता है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी आसमा नाज अंसारी और शबनम बानो जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातमा नाज। महोबा बुदेलखंड यूपी से जयपाल यादव इंद्रपाल यादव राघवेंद्र अरविंद रागिनी रिया रेनू दिव्यांशी आराधना रोनिका यादव चंद्रेश गोहर सुनील पाठक ने फरमाइश भेजी है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा निवान शर्मा सौरभ शर्मा शाइना शर्मा और मेंडी शर्मा ने गीत सुनना चाहा है। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। बोल हैं देव कोहली के संगीत राम लक्ष्मण का है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म साजन का ये गीत। आवाज़ थी अलका याग्निक की, बोल थे समीर के, संगीत निर्देशन नदीम चव्हाण का था। देखते हैं इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम में किस श्रोता ने सबसे पहले फरमाइश भेजी थी। तो देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभानी संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम आपके हैं कौन का ये गीत। आवाज़ें थी लता मंगेशकर, एस पी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की। बोल थे देव कोहली के, संगीत राम लक्ष्मण का था। श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश। कार्यक्रम की अगली पेशकश में सुनिए सौदागर फिल्म का एक गीत। आवाज़ें हैं कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर सिंह की। बोल है आनंद बख्शी के, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इसके लिए हमें फरमाइश आई है अड़ा नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा की। गांव फ्रांसिस, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने गीत सुनना चाहा है। रायगढ़ से हमारे श्रोता रोहित जयलक्ष्मी ने गीत को सुनना चाहा है। ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने गीत सुनना चाहा है। गिरिडीह, झारखंड से मोहम्मद यासिन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज़ और चाहत ने गीत सुनना चाहा है। लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू ने इस गीत को पसंद किया है। मोताला, महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला सुरलकर ने अपनी फरमाइश भेजी है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं सौदागर फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे सौदागर फिल्म का ये गीत। आवाज़ें थीं कविता कृष्णमूर्ति मरहा, सुखिंदर सिंह और साथियों की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश करता है लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं रिजवान खान, आयशा सभिया, अनस और रेहान। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो ने गीत सुनना चाहा है। अनारकली बाजार जगराव से हमारे श्रोता हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुचा पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखी रेखा देवी,

अजय कुमार, रिमी, तनुश्री, नन्हे पीरा बाजार, झुमरी तिलिया गिरिडीह से अभय कुमार, सनातनी शिवानी, प्रियंका, गुड्डू कुमार, मुन्नी जयप्रकाश और परिवार के सभी सदस्यों ने फरमाइश भेजी है। प्रेषक सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ, सारस ताल, सोनग्रा जिला, सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं प्रेम साय रजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खेलावन सिंह पैकरा, नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से पी एस नवाकर, निर्मला, विशाल, नारायण और सोपान ने गीत सुनना चाहा है। तो ये आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं तेजाब फिल्म का एक गीत। आवाज़ें हैं अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में फिल्म तेजाब का ये गीत। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आप सुनिए आशिकी फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। इस गीत को लिखा है समीर ने, धुन बनाई है नदीम शवर ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना आशिकी फिल्म का ये गीत। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। इस गीत को सुनना चाहा था बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, सविता, स्वाति कुकरेजा, माही पूजा, छुटकी शरद कुमार, डोंडवानी और पूरा माखीजा परिवार के सभी सदस्य। बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश और अंजलि रोशनी सारवा ने इस गीत को पसंद किया था। जिला अंबाला हरियाणा से फरमाइश आई थी रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, गुरकिरत, मन्नत, सिमरत, गुरशब्द राहुल और विजेंद्र जय जान की। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आप सुन रहे हैं। आज मैं हूं आपके साथ रिजवान। कार्यक्रम में अंतिम गीत के लिए हमें फरमाइश आई है राजकमल रेडियो श्रोता संघ जिला जालना मराठवाड़ से सैयद यूनुस, सैयद नौमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन की। मालवा रेडियो श्रोता संघ आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नाइमा रंजूबाई, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ ने गीत सुनना चाहा है। झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु और नव आनंद, सत्यम आनंद ने गीत सुनना चाहा है। बोहरा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने अपनी फरमाइश भेजी है। उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ने गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म दिल है कि मानता नहीं फिल्म से। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की।

0: अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के गाए फिल्म दिल है कि मानता नहीं के इस गीत के साथ श्रोताओं सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आज यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या का अंक कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय

0: टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय

0: प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा

0: एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defence, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಚೋರೆ ಗಣಿ ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಪಕಡ ಕರ

0: चतुर घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुर घोड़ा चतुर एक पैर है ना या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात
2: अपने ही जाल में फंसत जात
1: हम मरत

0: अभी आप सुन रहे थे पड़ोसन फिल्म का ये गीत। आवाज़ें थी किशोर कुमार महमूद और मन्नाडे की, बोल थे राजेंद्र किशन के और संगीत निर्देशन आरडी बर्मन का था।
1: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
2: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
1: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
2: क्या 230-600?
1: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहक।

0: ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
0: ये अपनी डायरी में बार बार 230-600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का एसटीडी कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं शोले फिल्म का एक गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और मन्ना डे की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत निर्देशन RD बर्मन का है।

किशोर कुमार और मन्ना डे की गाए फिल्म शोले के इस गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 9:30 हुए हैं। लीजिए पेश है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। ईमेल की गूंज सुनने वाले तमाम श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में पहले गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है। दतरंगी के हमारे श्रोता हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। स्टेट बैंक नगर, पश्चिम विहार, नई दिल्ली से ईमेल आया है लव शर्मा और रोशनी शर्मा का। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुनिशा सबिश्ता, मोहम्मद नसीब पलक, लुबना और यश मंसूरी ने ईमेल भेजा है। फातिमा कॉलोनी महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद, सबिहा मिखाइल और जैनब। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेखुल्ला बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख ने ईमेल भेजा है। मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से अभिजीत गावहंकर राही, सरिता गावहंकर, प्रणीता सिद्धांत गावहंकर, अर्जुन गावहंकर और टुक टुक ने ईमेल भेजा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हम दिल दे चुके सनम फिल्म का एक गीत। आवाजें थी कविता कृष्णमूर्ति, शंकर महादेवन और उस्ताद सुल्तान खान की। संगीत निर्देशन इस्माइल दरबार का था। बोल थे महबूब के। ईमेल की गूंज कार्यक्रम आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जब वी मेट का ये गीत। आवाज है उस्ताद राशिद खान की। संगीत संदेश सांडलिया का है। गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने। इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है लोरमी चचेड़ी से शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संजय कोलाम, संध्या कोलाम और शिवम कोलाम ने। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश गमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय ने ईमेल भेजा है। राजकोट से हमारे श्रोता हैं प्रवीण सोनी, कलावती सोनी। कच्छ भुज से ईमेल आया है जगदीश जौहरी और पायल कुमारी का। बढ़वा जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से गीत सुनना चाहा है प्रवीण और शिमाली ने। मेन रोड तेलहारा से ईमेल करता है प्रकाश पोहरकार, नर्मदा कुमारी सुजाता पोहरकार। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं जब वी मेट फिल्म का ये गीत।

0: राम राम हो विष्णु भैया।
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगत दे फटफट फटफट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही
1: कैसे कहिया बिनु भैया। ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर

0: में एडे जानकारी भेटाइस नहीं
1: हाँ।
0: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी अब ये विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में
1: हाँ।
0: आए तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसो हूँ बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नी बढ़ी नहीं तहाँ
1: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
0: हो
1: एदे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही हे तो महू तो सुनू भाई एदे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसानवाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्स पर नहीं अब आज कर तो भाई कहता है कि एदे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला ए दे सुन सकत है।
0: हाँ, अबे तो शुरू है कि साहे।
1: हाँ,
0: हम्म,
1: तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
0: किसान वाड़ी।
2: आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं ईमेल की गूंज कार्यक्रम। श्रोताओं, अगले गीत के लिए हमें ईमेल आया है ग्राम पंचायत खोंडला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा का। ग्राम पीपर लोड सरगांव मुंगेली से ईमेल करता है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, ये हमारे श्रोता हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े ने ईमेल भेजा है, मुकेश गोस्वामी, मधु आशीष, शिवन्या, अनु गोस्वामी, बिलासपुर उच्च भट्टी से इन्होंने ईमेल भेजा है और अब गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं देवदास फिल्म का एक गीत, बिरजू महाराज की आवाज़ है और माधुरी दीक्षित की और कविता कृष्णमूर्ति की, इस्माइल दरबार का संगीत निर्देशन है और नुसरत बद्र ने इसे लिखा है। तो सुनिए देवदास फिल्म का ये गीत।

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक

दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देवदास फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें ईमेल आया है लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से, विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू का। पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने ईमेल भेजा है। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा ने ईमेल भेजा है। अकोला से हमारे श्रोता हैं रमेश कामले और गणेश कामले। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशिहानी, पूजा, सीता एवं परिवार के सभी सदस्यों ने ईमेल भेजा है। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके, बालाजी चौक से ओटी शिवास और शेख आज़ाद ने गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं एक रिश्ता फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक रिश्ता फिल्म का ये गीत। ईमेल की गूंज कार्यक्रम आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए और अंतिम गीत को सुनना चाहा है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश, शीतल, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी और ऋतिक बलवीर सिंह ने। भोपालगढ़ राजस्थान से हमें ईमेल भेजा है धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार ने। नंदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण और संदीप बाठे ने गीत सुनना चाहा है। राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेलसाय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, लकी मरकाम, सीताराम मरकाम, अमरनाथ, मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडेराम राजवाड़े, नूरसाय राजवाड़े, हीरालाल प्रजापति, कविता मरकाम और आरती मरकाम ने ईमेल भेजा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म तुम बिन से। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की, बोल हैं फैज अनवर के, संगीत निर्देशन निखिल विनय का है।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के गाए फिल्म तुम्बिन के इस गीत के साथ श्रोताओं ईमेल की गूंज कार्यक्रम आज यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं रात्रि के 10 बजने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में जे एस श्रीराम का कर्नाटिक वोकल। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: लोकवाणी है। रविवार अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री जे एस श्रीराम का गायन। आज रात के इस प्रसारण में श्री जे एस श्रीराम के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर वीएसपी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री जे एस श्रीराम। ही इज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय वीएसपी गायत्री शिवानी, ऑन मृदंगम बाय विद्वान पेरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: श्री जे एस श्रीराम एक प्रतिभाशाली कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। वे अपने आकर्षक और अभिव्यंजक शैली के लिए सुप्रसिद्ध हैं। ये प्रख्यात संगीतज्ञों के परिवार में पैदा हुए हैं। इन्होंने अपनी माँ श्रीमती जे चिद्रूपा लक्ष्मी जी की प्रेरणा से संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और बाद में विद्वान द्वारम सत्यनारायण राव और विद्वान आकेला मल्लिकार्जुन शर्मा जी के मार्गदर्शन में गायन में आगे बढ़े। श्री सूर्वारम प्रताप रेड्डी तेलुगु विश्वविद्यालय में एमए संगीत में स्वर्ण पदक हासिल करके अब ये वहीं संगीत में शोध कार्य कर रहे हैं। ये कर्नाटक संगीत के साथ साथ नामसन कीर्तन में भी माहिर हैं और देश विदेश में मुख्य त्योहारों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समर्पित अध्यापक बनकर उन्होंने कई विद्यार्थियों को संगीत प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया है और आप ललित कलाओं को बढ़ावा देने वाली संप्रदाय जैसी लाभ निरपेक्ष संस्था में भी स्वच्छंद सेवारत हैं।
1: श्री जे एस श्रीराम इज अ वर्सटाइल कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड एन ए ग्रेड आर्टिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो। ही इज नोन फॉर हिज एक्सप्रेसिव एंड डायनामिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग। He hails from a distinguished musical family. Sriram was initiated into music by his mother, Srimati J. Chidrupa Lakshmi. Later, trained under Vidwan Dwaram Satyanarayan Rao and Laya exponent Vidwan Akella Mallikarjuna Sharma. He is a MA Music Gold Medalist from Sri Suravaram Prataparedi Telugu University, Hyderabad, where he is currently pursuing his PhD in music. Equally adept at Carnatic vocal concerts and Nama Sankirtanas, he performs at major festivals in India and abroad. As a dedicated teacher, he has trained many students to concert level. He also volunteers with Sampradaya, a non-profit organization promoting fine arts.
0: Shri J. Shri Ram apne gayan ka aarambh वालाजी पेटा वेंकटर अमना भागवतर की एक कृति से कर रहे हैं जो राग ललिता तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जे श्रीराम बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ वालाजी पेटा वेंकटरमण भागवतर इन द राग ललिता सेट टू आदिताल।

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to a composition of Shyama Shastri in the rag Purvi Kalyani set to Viloma Chapu Taal.

0: श्री जी श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराज की एक कृति से कर रहे हैं जो राग शंकरावर्णम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जे एस श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाई विद्वान पीरवली जयभास्कर एंड ऑन घटम बाई श्री एम चंद्रकांत।
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसवी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्री जे श्रीराम इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय वीएसपी गायत्री शिवानी, ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जयभास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत। दिस कॉन्सर्ट was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महसवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर

0: the IT headquarters in Kolkata. In ICC Women's T20 World Cup, India defeated Pakistan by 64 runs in a Group A match in Edgbaston in Birmingham. India set a target of 171 runs for arch rivals Pakistan. In reply, Pakistan were all out with 106 runs in 17 overs. Earlier, opting to bat first, India posted 174-6 in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए मीटर में वो 288.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा यहीं समाप्त होती है। अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 5:51 पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।